0: చిత్రసీమ సినిగీతాలు విన్నారు. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 12 గంటలకు వస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో హిందీలోనూ ఆంగ్లంలోనూ వార్తా ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కి సాత్ మే ఫర్హత్ నాజ్. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है. श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया.
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी. ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा. थैंक यू.
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है. ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है. प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी. संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई. इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है. श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी. सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है. सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी. इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी. श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया. सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्य

0: पुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणी ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत MV ओमोरफीम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सबसे अधिक प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं गुजरात में तेज बारिश के बाद बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 265 क्षेत्रों में बारिश हुई है। राज्य राहत आयुक्त ने 5 मौतों की पुष्टि की है। मौसम विभाग ने कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashwani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi posted a fresh video message on his Instagram handle last night, thanking everyone for the responses and positive suggestions received to his previous video, where he had announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the fresh video message, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
1: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Meanwhile, in a major bid to bring out serious examination reforms, the National Testing Agency NTA has terminated 47 officials from service. This is part of a complete overhaul of the NTA following controversy over paper leaks. Delhi Police has constituted a special task force to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient

नमस्ते क्यूरियस लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड इन टू हैदराबाद ए मीडियम वेव 738 किलोहर्ट्ज़, द वॉइस ऑफ यूथ। दिस इज श्रीविद्या चिट्टा, योर फ्रेंडली फ्रीक्वेंसी ऑफ थॉट, फीलिंग एंड अ लिटिल क्यूरियोसिटी। नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ सम ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस कैन मेक अस अनएक्सपेक्टेडली अनकंफर्टेबल? यू नो, क्वेश्चंस लाइक, सो व्हाट आर यू डूइंग दीस डेज, और हाउ इज योर करियर गोइंग, और Have you settled down yet? Well, on the surface, they seem like just ordinary questions. But sometimes, they don't feel like conversations at all. They feel more like assessments. The moment someone asks them, our minds begin racing. We wonder,

0: आकाशवाणी का ये हैदराबाद केंद्र है। मीडियम वेव 406.5 मीटर्स अर्थात 738 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर प्रस्तुत है आज का हिंदी कार्यक्रम। आप सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं वातावरण की स्वच्छता और सुंदरता हमारा दायित्व। इस विषय पर डॉक्टर रामकृष्णा रेड्डी जी से भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रही हैं कृष्णा कुमारी। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वच्छ और सुंदर वातावरण केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, हरियाली और प्रदूषण मुक्त परिवेश हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर है। इनकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर रामकृष्ण रेड्डी जी। आइए उनका हार्दिक स्वागत करते हुए और चर्चा का आरंभ करते हैं।
1: नमस्ते, थैंक यू टू आकाशवाणी हैदराबाद।
0: सर, चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण से आपका क्या अभिप्राय है?
1: ये स्वच्छ और सुंदर वातावरण से अपना मनोविलास होगा, पहली बात। सेकंड, अपना फिजिकल हेल्थ, वो भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि व्हेन मदर अर्थ या माँ धरती, हम कभी भी पर्यावरण या धरती को एड्रेस करें जब हम मदर के नाम से हम एड्रेस करते हैं। क्यों मदर के नाम से एड्रेस करना पर्यावरण को? क्योंकि हम पांच एलिमेंट्स के बने हुए हैं, ये अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड

0: ईदर, ये सब एलिमेंट्स मदर अर्थ हमको देते हैं। जब मदर अर्थ हमको ये सब दे रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मदर अर्थ को ठीक या शुभ्रता मेंटेन करना।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आप। लेकिन आज परिस्थिति वैसी नहीं रही। वर्तमान समय में हमारे पर्यावरण को सबसे अधिक प्रभावित करने वाली मुख्य समस्याएं कौन-कौन सी हैं?
0: जैसा अभी फर्स्ट थिंग, अभी ग्लोबल वार्मिंग
1: जी
0: या तापमान बढ़ना, अभी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप में पूरा तापमान बढ़ने से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। देयर लॉट ऑफ डेथ्स ड्यू टू इंक्रीज

0: ग्लोबल वार्मिंग या
1: जी
0: तापमान बढ़ना, अभी हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न यूरोप में पूरा तापमान बढ़ने से बहुत सारे लोग मर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ डेथ्स ड्यू टू इंक्रीज्ड टेम्परेचर इन वेस्टर्न यूरोप. वो तापमान बढ़ने से ये शरीर अडेप्शन नहीं होगा, और अडेप्ट नहीं हुए तो ये टेम्परेचर रेगुलेशन का प्रॉब्लम होके बहुत सारे डेथ्स हो रहे हैं.
1: जी सर.
0: सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन की वजह से अभी ब्रोंकियल अस्थमा या स्किन डिजीज या दूसरा प्रॉब्लम से बहुत सफरिंग हो रहा अभी. तो एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन द करंट सिचुएशन. थर्ड इज वाटर पोल्यूशन. अभी पानी का पोल्यूशन से ज्यादा डिजीजेस, डायरिया या दूसरा डिजीजेस लाइक स्किन डिजीजेस, ये प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ गया है.
1: जी हाँ, ये सारी समस्याएं सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती है. वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. जी, मैं आगे ये पूछना चाहूंगी, अक्सर लोग सोचते हैं कि पर्यावरण को साफ रखना सिर्फ सरकार का काम है. पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने में आम नागरिक की क्या भूमिका हो सकती है?
0: ये पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए ये सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है. पर्यावरण स्वच्छता घर से शुरू होता है. जब घर में गंदगी नहीं है तो बाहर एनवायरमेंट में भी गंदगी नहीं होगा. तो अपना घर स्वच्छ रख लेना, फिर थोड़ा हेल्दी प्रैक्टिसेस इस्तेमाल करना, लाइक ओपन डेफिकेशन का इस्तेमाल नहीं करना, और मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करना, और वेस्ट डिस्पोजल प्रॉपर करे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करेंगे.
1: तो शुरुआत हमें अपने घर से ही करना चाहिए. घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखिए तो एनवायरमेंट भी साफ ही रहेगा. डॉक्टर रेड्डी जी, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए?
0: अभी रिसेंटली जब हम देख रहे एक बड़ा आइलैंड, ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू अंडमान एंड निकोबार, उतना आइलैंड का पूरा प्लास्टिक भरा हुआ है सी में. तो ये प्लास्टिक जो है रीयूजेबल रिसाइकल मटेरियल नहीं है. दैट मीन्स ये प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, वो प्लास्टिक वैसा ही रहेगा. हाउ मेनी एवर ईयर्स टू कम दिस प्लास्टिक विल स्टे लाइक दैट. तो इसका प्रॉब्लम क्या हो रहा बोले तो ये प्लास्टिक्स पूरा माइक्रो प्लास्टिक कन्वर्ट होने के बाद ये फिश और दूसरा ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे. जो हम फिश कंज्यूम करते हैं, जो प्लास्टिक फिश के अंदर है, हमको बहुत सारी डिजीजेस आ रहे हैं, लाइक कैंसर्स एंड स्टमक प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे. और ये प्लास्टिक की वजह से वॉल्यूम ऑफ नेचुरल ग्रोइंग ऑर्गेनिक मटेरियल कम हो रहा है. तो ये प्लास्टिक को अवॉइड करने से बहुत अच्छा होगा.
1: जो आपने घर से शुरुआत करने की बात कही थी, घर और आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए हम कौन कौन से सरल उपाय अपना सकते हैं?
0: सो फर्स्ट, हम वाटर पूलिंग नहीं करना. वाटर जो भी है धरती के अंदर जाना. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंकिंग पिट्स, वाटर पिट्स एट द होम टू रिन्यू द वाटर सोर्सेस इन द ग्राउंड. सेकेंड थिंग, हम वाटर पूलिंग अवॉइड नहीं कर सके तो उसके ऊपर हम कुछ मस्कीटोज ब्रीड नहीं होने का कुछ उपाय कर लेना. थर्ड, जो भी वेस्ट मटेरियल है हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में सेपरेट करके डिस्पोजल के लिए हम सही मेथड्स इस्तेमाल करना पड़े, वेट डिस्पोजल और ड्राई डिस्पोजल. और अभी ड्राई डिस्पोजेबल कैन बी रिसाइकल, रिसाइकल कर सकते और उसको दूसरे यूजेस कर सकते, लाइक लेइंग ऑफ रोड्स विद प्लास्टिक, क्रिएटिंग फर्नीचर विद प्लास्टिक एंड अदर ड्राई मटेरियल. वेट मटेरियल से हम उसको कंपोस्टिंग करके मेन्योर कर सकते हैं, या मीथेन गैस प्रोड्यूस कर उसको और दूसरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसा इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: जी हाँ सर, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया. आजकल कंक्रीट के बढ़ते जंगलों के बीच वृक्षारोपण और हरियाली बढ़ाने का पर्यावरण संरक्षण में कितना महत्व है?
0: जैसा कंक्रीट जंगल, अभी इसको कंक्रीट बिल्डिंग्स को कंक्रीट जंगल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कंक्रीट होने से दिन में ये हीट अब्सॉर्ब होगा ये कंक्रीट को, फिर रात का टाइम में पूरा एमिट करेगा. तो इसके वजह से देयर इज नो एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ टू द आउटसाइड सिस्टम और टू द एटमॉस्फेयर. तो अभी जंगल में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन कवर, प्लांट्स हीट अब्सॉर्ब करके उसको ऑक्सीजन के कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये सब नए होने की वजह से द इंटरनल टेम्परेचर विद इन द सिटीज बहुत बढ़ गया है. अभी समझ लीजिए, हम हैदराबाद में अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से है, अनंतगिरी हिल्स को गए तो इमीडिएटली द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन टू अराउंड 37 टू 36 डिग्रीज. मगर टेम्परेचर का ड्रॉप है यहां से कंपेयर करें तो हैदराबाद टू अनंतगिरी हिल्स. तो अभी हम हरियाली का कवर या पेड़ रखने से

0: जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो ट्रीज कैन रिड्यूस द टेम्परेचर फर्स्ट. सेकेंड थिंग, ये ऑक्सीजन बढ़ाने का जो प्रयत्न है, ट्रीज ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे. एक स्टडी के मुताबिक 8 ट्रीज चाहे एक आदमी बचने के लिए एक साल के लिए. अभी हम देखे तो डिफॉरेस्टेशन बहुत है, फॉरेस्ट पूरा कट करके हम कमर्शियल प्लांटिंग कर रहे. ये कमर्शियल प्लांटेशन से दो नुकसान हो रहा, एक अपना टेम्परेचर बढ़ रहा है, सेकेंड ये कमर्शियल प्लांटेशन से जो बड़ा पेड़ नजदीक नहीं है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्ट ज्यादा बढ़ रहे. तो ये पेस्ट बढ़ने से अभी इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू हुआ. इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करने से ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन भी ज्यादा हो गया. तो अभी ग्रीन कवर बढ़ने से अपना ऑक्सीजन रिप्लेनिश होगा और अपना टेम्परेचर कंट्रोल भी होगा. और टेम्परेचर कंट्रोल डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेनफॉल पर ईयर. तो जितना हरियाली कवर है जितना उसके मुताबिक रेनफॉल भी एडिक्वेट होगा.
1: जी जी, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया इस विषय पर. आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करना भी जरूरी है. बच्चों और युवाओं में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?
0: मोटिवेट करने के लिए वी हैव टू इन्वॉल्व द यंग पीपल, द यंग जनरेशन टू ओन दिस मदर अर्थ. एंड उनको एक्सप्लेन करना होगा कि एनवायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है अपने लिए. अपने लिए नहीं मगर आने वाले जनरेशन्स को भी ये एनवायरमेंट स्वच्छ रखे, अच्छा रखे, तो उनको भी ये बेनिफिट्स और पूरा दे सकते हैं. तो उसके लिए पहले वो एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट से क्या अच्छाई बनता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है और हाउ टू ओन इट, ये मोटिवेट करना पीपल को. पीपल को इंटरेस्ट रहता है कैसा ये क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन रहता है, मगर कैसा करना वो मोटिवेट करे तो वो लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे. और थोड़ा ऐसा फॉरेस्ट कैंपिंग, नेचर फ्रेंडली एक्टिविटीज प्रमोट करे तो ये पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज होके एनवायरमेंट के बचने के लिए इवन कॉमन मैन एंड यूथ कदम बढ़ाएंगे.
1: जी सर. डॉक्टर रेड्डी जी, जल संरक्षण और ऊर्जा यानी बिजली की बचत का हमारे स्वच्छ पर्यावरण से क्या संबंध है?
0: अभी देख लीजिए, पहले मूसी रिवर से पानी पीते थे हैदराबाद के लोग, मगर अभी मूसी ऐसा हुआ है पूरा, इट हैज बिकम लाइक ए वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम के जैसा हो गया है. अभी अपन को पानी दिखता है मगर पानी नहीं पी सकते, उससे कुछ काम नहीं कर सकते. पोल्यूटेड वाटर मस्ट बी प्यूरिफाइड. ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए अभी 2-3 जगह पे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स भी लगाए, मगर गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लेना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट और ये ह्यूमन वेस्ट एट नो पॉइंट ऑफ टाइम शुड कंटेमिनेट द रिवर्स. जैसा जापान में पॉलिसी है, एनी लेक एनी रिवर विल नॉट बी कंटेमिनेटेड बाई आइदर इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट. वैसा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लेके आके, स्ट्रिक्ट रूल्स लेके आके हम अगर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वाटर पोल्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड. इन एनर्जी जो इलेक्ट्रिसिटी है, अभी प्रीवियसली हमारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पूरा कोल से आ रहा था. अभी कोल नेचुरल फ्यूल है, कोल बर्न करने से कार्बन एमिशन ज्यादा होगा और ओजोन भी डिस्टर्ब हो रहा है एटमॉस्फेयर में. तो अभी रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी लाइक सोलर एनर्जी, विंड हार्नेसिंग ऑफ द विंड और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को एनकरेज करना चाहिए और अपनी तरफ से हम एनर्जी एक्सपेंडिचर एज मिनिमल एज पॉसिबल करना चाहिए. लाइक नेचुरल वेंटिलेशन अगर घर में इनकरेज करे तो नेचुरल मूवमेंट ऑफ एयर भी फैन या एसी का जरूरत ही कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर कम होगा. और जब भी जरूरत नहीं है तो फैन बंद करना, लाइट्स स्विच ऑफ करना या प्लग पॉइंट्स में चार्जर्स छोड़ना विद द स्विच ऑन, ये सब कर लिए तो इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन भी होगा. और एक बात, ये अभी नेचुरल जो कार्बन बेस्ड फ्यूल्स है उसका इस्तेमाल भी कम कर सकते हैं द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम. लाइक जैसा सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, दो सॉर्ट ऑफ मेजर्स बाय द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो पब्लिक अवेयरनेस से थोड़ा ये कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकते हैं एनवायरमेंट.
1: डॉक्टर रेड्डी जी, स्वच्छ भारत अभियान और अन्य सरकारी योजनाएं इन दिशा में कितनी सहायक सिद्ध हुई है?
0: अभी स्वच्छ भारत अभियान

0: डायरियल डिजीजेस कम हो गए हैं, ये इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जैसा वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट हम सेग्रीगेट करके वही डिस्पोज करें, तो ये वेट वेस्ट से अभी ज़्यादा तरफ मैन्योर बना सकते हैं और मीथेन गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये ड्राई वेस्ट से रिसाइकिल करके अभी रोड्स बनाना या कुछ फर्नीचर बनाना या कुछ यूजेबल प्रोडक्ट्स बनाना ये कर सकते हैं। इसके इस वजह से जो भी एनवायरमेंटल का पोल्यूशन है, स्पेशली वाटर एंड ऑल्सो ड्यू टू प्लास्टिक, ये बहुत कम हो गया।
1: जी हाँ, पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की बात कर रही है, इसका हमारे दैनिक जीवन पर क्या सीधा प्रभाव पड़ रहा है?
0: ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एल नीनो इफेक्ट माने टेम्परेचर इन द ओशंस हैव इंक्रीज्ड बाय 3 degrees, 2 to 3 degrees, तो इसके वजह से अभी वेस्टर्न यूरोप पूरा तापमान बढ़ के बहुत ह्यूमन बीइंग्स का डेथ हो रहा है, और उसके वजह से अभी जो भी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पैटर्न कंप्लीट बदल गया है। मॉनसून शुरू होने का था जून जुलाई में, अभी तो तेलंगाना एरिया में देयर इज अ डेफिसिट ऑफ 70% ऑफ रेनफॉल नाउ, तो अभी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में अभी ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, बॉम्बे में पूरा रेनफॉल ज्यादा हो गया है, तो इस वजह से फ्लैश फ्लड्स इन एक्सेस रेनफॉल एरियाज, लैक ऑफ रेन लीडिंग टू डेजर्ट्स, लैक ऑफ फूड प्रोड्यूस इन एरियाज ऑफ लिमिटेड रेनफॉल, और इसके वजह से ये फूड प्रोडक्शन कम होना या फ्लैश फ्लड्स आके ह्यूमन लॉस होना और ह्यूमन प्रॉपर्टीज डिस्ट्रक्शन होना, ये सब ज्यादा बढ़ गया है। और एक बात, इधर ग्लोबल वार्मिंग होने से अपना ग्लेशियर्स, जो भी ग्लेशियर्स है जो पेरिनियल वाटर सिस्टम का रिवर्स को सपोर्ट कर रहा है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो अगली कुछ साल में अगर ये क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं सकते तो पूरा वर्ल्ड डेजर्ट के जैसा होने का संभावना है।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, अक्सर एक आम इंसान सोचता है कि अकेले मेरे बदलने से क्या होगा, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एक छोटा सा पर्यावरण हितेशी कदम उठाए तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।
0: ये सेइंग है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ ओशन मेक ए माइटी,
1: जी जी, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर सागर भरता है,
0: मेक ए माइटी ओशन। तो अभी हमारी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, हर इंडिविजुअल, जैसे हम बताया कि वाटर लॉगिंग प्रिवेंट करना फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग रेन हार्वेस्टिंग पिट्स इस्तेमाल करना, थर्ड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ये अगर किचन का वाटर है तो उसको रीयूज करके प्लांट्स के लिए, दूसरा जो नॉन ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी स्लूस है वो प्रॉपर डिस्पोजल करके उसका कंटेमिनेट, जैसा रेगुलर रिवर्स नहीं कंटेमिनेट हुए जैसा देख सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम विच विल गेट कनेक्टेड टू द ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइडेड बाई द सिटीज और टाउन्स। और एक बात, कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन, सोचो हमारे आसपास के एनवायरमेंट को क्लीन रख लिए, जैसा रैट्स का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा तो प्लेग और दूसरा डिजीज जो भी रोडेंट्स के वजह से आते हैं, कॉकरोचेस के वजह से आते हैं, ये सब हम प्रिवेंट कर सकते। तो अपना घर क्लीन रख लेना, अपना वेस्ट डिस्पोजेबल प्रॉपर कर लेना, अपना वाटर रीयूज और रीमैनेजमेंट करने का वो प्रॉपर कर लेना, और जो भी ड्रेनेज सिस्टम अपने घर से निकल रहा है अगर वो प्रॉपर है या नहीं वो भी देखने से अपनी तरफ से हम कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पर्यावरण को अच्छा रखने के लिए।
1: डॉक्टर रामकृष्णा जी, इस सामूहिक प्रयास के लिए समाज, विद्यालय और स्थानीय संस्थाओं को मिलकर किस प्रकार कार्य करना चाहिए?
0: अपना एजुकेशन जो है, स्कूल एजुकेशन, वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पढ़ा रहे, थोड़ा थोड़ा सोशल स्टडीज में टॉपिक्स है जो इंक्लूड हुआ है, हाउ टू मेक अवर एनवायरमेंट बेटर, बट ये सब सिर्फ थियरी लिमिटेड हो गए हैं। तो ये बच्चे लोगों को नेचर कैंप्स, नेचर ट्रिप्स, बेनिफिट्स ऑफ नेचर, बेनिफिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन कवर एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल, हाउ क्लीन वाटर हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड व्हाट हैपेंस इफ वी फॉल सिक, ये पब्लिक अवेयरनेस स्कूल्स में लेके आके फिर उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैंप साइट्स में कराए, तो इसके वजह से छोटे बच्चे दे स्टार्ट ओनिंग द प्लेस, अपना ये धरती अपना है, ये घर अपना है, ये एनवायरमेंट अपना है, व्हेन दे स्टार्ट ओनिंग द प्लेस दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनवायरमेंट। एंड ये सब सिर्फ स्कूल बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए अच्छा है, मगर जो यूथ है जो कॉलेज में है उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डे टू डे लाइफ, लाइक प्लांटिंग ट्रीज, फॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन एंड हाउ टू प्रिवेंट डीफॉरेस्टेशन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, हाउ वाइल्ड एनिमल्स विल हेल्प अस

0: stay healthy? What is ecological balance? What is a predatory chain? How bees help in propagating the trees? How bees help in pollination? How birds help in pollination? ये सब नेचर के बारे में उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना और उनका जो जिज्ञास है वो बढ़ाए, तो अपने आप स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. और हम अभी जी रहे हैं, मगर अगला जनरेशन को यही जो हम देख रहे, अगर इफ वी कैन गिव द सेम अमाउंट ऑफ environment which is clean or a better place for them to stay, and that motivation to give the next generation a better environment will help the society in preserving the environment.
1: Dr. Reddy, आज आपसे बात करके हमारे श्रोताओं को बहुत सी नई बातें सीखने को मिली. अंत में आप हमारे श्रोताओं को पर्यावरण की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखने के लिए क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा मदर का जब ऑपरेशन हुआ था, ऑक्सीजन का सैचुरेशन 92 को कम हो गया था. 95 इज नॉर्मल, मगर 92 से कम होने से बेचैन बेचैन होते माइंड को. वही ऑक्सीजन जब हम फॉरेस्ट को जाके देखते हैं, नॉर्मल सैचुरेशन है 99%, सिटी सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है 95%. तो 4% डिफरेंट इन ऑक्सीजनेशन ऑन द पॉजिटिव वे विल डेफिनेटली हेल्प इन द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. समझो 95 से 92 को कम हो गया ऑक्सीजन का सैचुरेशन, हर मनुष्य को माइंड का क्लैरिटी कम होना, फिजिकल इल हेल्थ समझ में आना, ये सब होता है. मगर 95 से अगर 99 को बढ़ गया ऑक्सीजन का सैचुरेशन, वेरी हेल्दी बीइंग, वेरी पॉजिटिव बीइंग और ये गुड हेल्थ महसूस होता है. तो जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि हमारा जो भी अंदर का बॉडी सिस्टम है वो सब फंक्शनिंग अच्छा होगा.
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रामकृष्ण रेड्डी जी स्टूडियो में आने के लिए और हमारे श्रोताओं के साथ इतने अमूल्य विचार साझा करने के लिए.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: श्रोताओं, वातावरण की स्वच्छता और सुंदरता बनाए रखना केवल सरकार या किसी एक संस्थान की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सभी का साझा दायित्व है. यदि हम छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे स्वच्छता बनाए रखें, वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहे, तो हम सब एक स्वच्छ और सुंदर भारत का निर्माण कर सकते हैं. इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से हमें अनुमति दीजिए. नमस्कार. आप सुन रहे थे वातावरण की स्वच्छता और सुंदरता हमारा दायित्व. इस विषय पर डॉक्टर रामकृष्ण रेड्डी जी से भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रही थी कृष्णा कुमारी. ये कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद से प्रसारण किया गया. श्रोताओं, मधुमती फिल्म से सुनते हैं मुकेश को. गीत लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने.

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: विविध भारती पर मन चाहे गीत कार्यक्रम के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें, आपकी फरमाइशी गीतों की फरमाइश पूरी करें, उससे पहले जानते हैं आज के जो ये कार्यक्रम है मन चाहे गीत, उसमें पत्र भेजने का क्या तरीका है और क्या है नियम।
0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहेगी,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: तो कार्यक्रम मन चाहे गीत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम का पहला गीत किसकी फरमाइश पर सुनवाने वाले हैं ये तो बताएंगे ही, लेकिन वो गीत है मेरे हुजूर फिल्म से, ये आपको पहले बता रहे हैं। और इसकी फरमाइश आई है न्यू ईदगाह कॉलोनी कानपुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद अहमद रायनी, अबरार अहमद रायनी, शकीला बेगम रायनी, बद्री प्रसाद यादव, सौरभ सोनवानी, एम ए कानपुरी, आर के कानपुरी ने भी इस गीत की फरमाइश यहीं से भेजी है। और दतरंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा भी सुनना चाहते हैं मेरे हुजूर फिल्म से गीत। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, अपनी पसंद पर सुनिए ये गीत।

0: से मर ना जा।
1: मेरे हुजूर फिल्म का ये गीत आपने सुना। मन चाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब कार्यक्रम का अगला गीत जिनकी फरमाइश पर जिनकी पसंद पर हम सुनवा रहे हैं उनके नाम है न्यू मार्केट टीटी नगर भोपाल से अजय शीतल जो कि अपनी पत्नी के लिए ये गीत सुनना चाहते हैं। चार डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गा राम साहू अजय कुमार साहू किशन साहू जय कुमार श्रीमती कुमारी साहू श्रीमती इंद्राणी माया साहू आप सभी की पसंद पर जहां आरा फिल्म से ये गीत

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: विविध भारती पर, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत, और जिसके मन चाहे गीत को हम सुनने वाले हैं उनके नाम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको गीत सुनवा दें। लीडर फिल्म से एक गीत सुनिए, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, और गीत के बाद बताएंगे कि किसकी पसंद पर सुनवाया ये गीत।

मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल आपने सुने। नौशाद का संगीत फिल्म लीडर से गीत आपने सुना और इस गीत की फरमाइश हमें आई थी जोधपुर राजस्थान से मोहम्मद अफजल, मोहम्मद इजान, सनोवर रानू, हुमेहानी और साथ ही नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त केरव, ज्योति रानी, गुरमनंत ने भी इसी गीत की फरमाइश की थी। कार्यक्रम मनचाहे गीत विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अगला मनचाहा गीत है सगीना फिल्म से और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी ने मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा सिंह, लीलू और रितु सिंह, सेक्टर 18 जगाधरी हरियाणा से विनय मोहन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी आप सभी की पसंद पर सभी को सुनवा रहे हैं सगीना फिल्म से गीत और इस गीत में आवाज किशोर कुमार की।

माफ कीरे माफ कीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे माफ कीरे सूट पहनकर कैसा कूदे फांदे कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे अरे क्या जानो हम इस भेजा में क्या क्या नक्शा खींचा लीडर लोग की ऊंची बातें क्या समझे तुम नीचा मेरा वो सब जाहिल बन गया ए साला मैं तो सा बन गया Attention! Salam.

0: या गंगू तेरी,
1: तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम लंगोटी वाला ना बदला है ना बदलेगा, तुम सब काला लोग का किस्मत हम साला बदलेगा, हम साला बदलेगा। सीना देख

सगीना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और पंकज मित्रा की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज, और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मन चाहे गीत। तो किसी की पसंद पर वो गीत तो हमने सुनवा दिया, लेकिन अगला गीत किसकी पसंद पर है ये आपको बताते हैं। अगला गीत है गिरधारी लाल दुआ महितपुर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, इन्होंने अपनी पसंद भेजी है। साथ ही सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया, इन्होंने भी अपनी पसंद भेजी है। और आप सभी की पसंद पर हम सुनवाने वाले हैं सिंग इज किंग फिल्म से गीत। लव जैन जुनेजा ने इसे और सुजी क्यू की आवाजें हैं, मयूरपुरी के बोल प्रीतम का संगीत। तो सुनिए आप सभी की पसंद पर ये गीत।

सुजैन डिमेलो और लव जंजुआ की आवाजों में आपने सुना सिंग इज किंग फिल्म का ये गीत, मयूर पुरी ने से लिखा, प्रीतम का संगीत। अब कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाते हैं। मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। इतिहास फिल्म से ये गीत सुनने की फरमाइश आई है। मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अजान, सैफ अली खान, मोहब्बत अली, रजाक अली, नथु खान सेमपुरा बीकानेर से आप सभी हैं, और बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी, महादेव केशरी, श्रद्धानंद केशरी, रोशनी केशरी की पसंद भी है चोरी चोरी। ये गीत सुनना चाहते हैं इतिहास फिल्म से। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, समीर के बोल, दिलीप सेन, समीर सेन का संगीत। तो सुनिए ये गीत आपकी पसंद पर।

0: नाट्य तरंग कार्यक्रम में लीजिए सुनिए डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा नाटक वो मंजिल कहाँ, निर्देशक स्वतंत्र कुमार ओझा।
1: हेलो, रीता स्पीकिंग। जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ। आप? अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता। क्या कहा? कब? अस्पताल? अच्छा अच्छा, मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
1: सचिन का फोन था। पापा हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,
3: आपके प्रार्थना पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि हमारे यहाँ भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। आप क्या फरमाते हैं? यस सर, आई रिग्रेट टू से दैट द पोस्ट ऑफ द पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडवर्टाइज्ड बाय अस हैज सिंस बीन फिल्ड अप। हाउएवर सम पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क्स आर स्टिल लाइंग वेकेंट। लोअर डिवीजन क्लर्क? और आप किस सिंहासन पर बैठाने वाले हैं? जनाब चंद्रा साहेब, हमारे मदरसे में अंग्रेजी के मुदर्रिस की जगह खाली है, लेकिन हमें अफसोस है कि हमारी माली हालत इस वक्त नाजुक है, इसलिए हम आपको फिलहाल 100 रुपया महीना से ज्यादा तनख्वाह नहीं दे सकेंगे। हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटी के एमए पीएचडी को 100 रुपया महीना की मास्टरी?
4: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
3: तुम भी आ गए कंगाली में आटा गीला करने।
4: वो तो आना ही था।
3: पहले सिगरेट तलब करोगे, थोड़ी देर मेरा दिमाग खाओगे और फिर चाय की मांग करोगे।
4: ओफो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम्हारे ऑस्कर वाइल्ड ने ही तो कहा था कि जब मैं कर्ज में होता हूँ तो हर खर्च बर्दाश्त कर सकता हूँ।
3: मेरी हालत तो इससे भी बदतर है जाने मन।
4: हाँ?
3: मुझे 100 रुपये महीने की मास्टरी मिल रही है। जो लोग इस उम्मीद में कर्ज दिए जा रहे थे कि डॉक्टर हरीश चंद्र आज नहीं तो कल किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे, वे भी मेरी मास्टरी देखकर कर्ज देना बंद कर देंगे।
4: अच्छा, वेरी गुड। क्यों हरीश, कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
3: कारोबार के लिए पूंजी कहाँ से लाऊंगा? तुम्हें तो मालूम है अख्तर, पिताजी जो कुछ छोड़ गए थे वो सब पढ़ाई में खत्म हो गया। अब सिवा कर्ज के मेरे पास कुछ नहीं है।
5: अरे भाई, क्या साजिश हो रही है?
3: अभी तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब आप तशरीफ लाए हैं तो जरूर होगी। क्यों होगी?
5: ओहो जनाब अख्तर साहब, यहाँ डटे
4: आधा वर्ष। मियाँ
5: मैं पूछता हूँ, आखिर बात क्या है? कोई पार्टी वार्टी है क्या?
4: अरे मियाँ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं है, हरीश की बेकारी पर मातमपुरसी करने चला आया था।
5: भाई देखो अख्तर भाई, अगर बेकारी के लिए मातमपुरसी होने लगे ना तो ये देश मातमपुरसी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकेगा। ये मेरी अपनी राय।
4: तो और करता भी क्या है?
5: देखो हरीश, ये बेकारी का सवाल तुम व्यक्तिगत सवाल मत समझो, ये पूरे समाज और सारे देश का सवाल है।
3: सचिन, व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत सवाल नहीं तो और क्या है? बेकार इंसान को जिन कमियों का सामना करना पड़ता है, समाज में जिन अपमानों का शिकार होना पड़ता है, वे सब इंसान भोगता है, क्योंकि इंसान के मन होता है, आत्मा होती है।
5: हाँ, मैं मानता हूँ ये सही है कि व्यक्ति के मन होता है, आत्मा होती है, और समाज का कोई मन नहीं होता, कोई आत्मा भी नहीं होती। लेकिन मैं फिलॉसफी की चर्चा नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ

0: हरीश की इस समस्या का इलाज व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, सामाजिक इलाज से ही समस्या को सुलझाया जा सकता है। ये मेरी अपनी राय।
1: यानी आपकी नेक सलाह ये है कि डॉक्टर हरीश चंद्र इनकलाब का परचम ऊंचा कर सड़कें नापने का काम शुरू कर दें।
0: जी हाँ, पर अकेले नहीं बल्कि और बेकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, क्योंकि इनकलाब के बिना बेकारी खत्म नहीं हो सकती।
2: सचिन, तुम्हारे विचार में जानता हूं, तुम हर मर्ज का इलाज अपनी पार्टी के इशारे पर होने वाली क्रांति में देखते हो, लेकिन ये तो बताओ कि क्रांति होने तक बेकार इंसान क्या करेगा?
1: सचिन, ये भी गौरतलब है कि इनकलाब गुत्थियां सुलझाने से ज्यादा नई गुत्थियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों से शुरू किए इनकलाब बेहाथ होकर ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाती है।
0: अख्तर, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? तुम बिल्कुल रिएक्शनरी हो। तुम इनकलाब का ना मतलब समझते हो और ना ही उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यता।
2: अरे अरे, ये तुम दोनों ने क्या राजनीतिक अखाड़ेबाजी शुरू कर दी है? यहाँ रोटी रोजी के लिए परेशान है और आप लोग हैं कि सिद्धांत बगाड़ रहे हैं।
1: करेक्ट सर। सचिन भाई, सुलह की दरख्वास्त करता हूँ,
0: बशर्ते कि उसकी घोषणा चाय के प्याले से हो।
1: करेक्ट।
2: अरे वो तो अख्तर के आते ही मैंने कह दिया था कि हजरत पहले सिगरेट मांगेंगे, फिर सर खाएंगे और आखिर में चाय पर पहुंचेंगे। चलो चलो बाहर चलो
0: चलो चलो आप।
3: रितु, क्या मंगवाए?
4: बस कॉफी।
3: बैरा?
5: जी सर।
3: दो कोल्ड कॉफी।
5: बहुत सर।
4: तुम्हारी अर्जियों के कोई जवाब आए?
3: आए, जितनी अच्छी जगह थी सब भर चुकी है, बची है क्लर्की और मास्टरी की जगह, वे खाली है। तनख्वाह भी काफी शानदार है, 100 रुपया महीना।
4: अच्छी नौकरियां भी आखिर किसी न किसी को तो मिलती हैं।
3: जरूर मिलती है।
4: फिर मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्यों नहीं मिलती?
3: प्रोफेसर डॉक्टर मिस रीता सिन्हा, आप बड़ी भोली है।
4: अच्छा
3: रितु, जानती हो नौकरियां किन्हें मिलती है? चाचा भतीजे को सबसे अधिक नंबर देता है।
4: तुम भी जाति प्रदेश और रिश्ते की सीढ़ी पर पैर रखकर ऊंची कुर्सी पर पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं करते?
3: क्योंकि मैं जाति मानता हूँ और न प्रदेश से बंधा हूँ, रिश्तेदार कोई है नहीं।
4: तुम मजाक कर रहे हो।
3: मजाक मैं नहीं, मेरी तकदीर कर रही है। क्योंकि मैं न जाति से बंधा हूँ और न प्रदेश से, इसलिए सिर्फ हिंदुस्तानी हूँ।
4: हरीश, बेकारी तुम में कड़वाहट पैदा कर रही है। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
3: मेरी सुबह तुम्हारे एक शब्द के इंतजार में रुकी हुई है रीता।
4: फिर वही बात।
3: रितु, शादी के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मेरा सारा खालीपन दूर हो जाएगा, जिंदगी जीने के लायक बन जाएगी। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, वो एक खाली प्याला है।
4: जिंदगी के प्याले में कई चीजें पी जा सकती हैं, उसे शादी के लिए खाली छोड़ देना क्या उचित है?
3: हर आदमी को अलग अलग समय पर अलग अलग प्यास होती है। आज मेरी प्यास दूसरी है, मुझे स्नेह चाहिए। किसी के प्रेम की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उठ सकता हूँ, जिंदगी की निराशा और दुख को जीत सकता हूँ, इंसान की तरह खड़ा हो सकता हूँ, लड़ सकता हूँ।
4: अगर मेरे स्नेह से सब मिल सकता हो तो तुम जानते हो वो तुम्हारा है। रहा शादी का सवाल, उसके लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साल दो साल में शादी का मुहूर्त भी निकाल लिया जाएगा।
3: साल दो साल, ये सजा क्यों?
4: ये सजा नहीं, ये परीक्षा है, कसौटी है, ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारा प्रेम साल दो साल के इंतजार को सह सकता है।
3: तब तक मैं क्या करूं?
5: सर बिल।
4: तब तक बिल चुका।
6: अख्तर, हरीश के मामले में तुम कहां तक पहुंचे हो?
7: मेजर, हरीश को दल में लाना आसान नहीं है।
6: आसान होता तो तुम्हें यह नहीं सौंपा जाता। और ये मत भूलो कि हरीश का नाम तुमने ही सुझाया था।
7: इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया।
6: शायरी नहीं, मुझे रिपोर्ट चाहिए।
7: हरीश ने भी नाउम्मीदी के दौर में पैर रखा ही है, गहरे में पहुंचते ही हम उसे अपने पास घसीट लाएंगे।
6: एक बात ध्यान रखना, जब तक हरीश दिमागी तौर से तैयार

0: आ रहे हैं और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं।
1: अरे मैं तो भूल ही गया,
0: आपसे मिलिए मिस अलका, और आप हैं डॉक्टर हरीश चंद्र MA PhD वगैरह वगैरह, और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
2: हाउ डू यू डू,
3: हाउ डू यू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अद्दा साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
0: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है
4: भाई। आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी।

0: और आप हैं मिस्टर सचिन मेहरोत्रा, मशहूर पॉलिटिकल वर्कर।
1: हाउ डू डू।
2: हाउ डू डू। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। अद्दा साहब से आप लोगों की बेहद तारीफ सुन चुकी हूँ। चलिए एक कप कॉफी हो जाए, आइए ना।
0: कॉफी? श्योर श्योर, क्यों सचिन, ख्याल तो बुरा नहीं है।
1: भाई आज माफी चाहता हूँ मिस अलका, एक मीटिंग है जिसमें पहुंचना जरूरी है, फिर कभी साथ दे दूंगा। अच्छा ओके बाय
2: बाय। और आप डॉक्टर चंद्र?
3: मैं
0: भाई हरीश, तुम्हें चलना पड़ेगा, तुम्हें कहाँ जाना है?
2: आइए ना डॉक्टर चंद्र।
1: चलिए मैं आपकी सेवा में हूँ।
0: दैट्स गुड।
2: बैठिए ना डॉक्टर चंद्र,
0: बैठिए। बैरा बैरा।
4: जी साहब।
0: तीन कॉफी लाओ। कुछ खाओगी अलका?
2: जी नहीं।
0: तुम कुछ लोगे हरीश?
1: मैं कुछ नहीं लूंगा।
0: ओके बस तीन गर्म कॉफी लाओ। बैरा
4: अभी लाया सर।
0: हरीश अलका बढ़िया कहानियां लिखती है, गाना नाचना और एक्टिंग तीनों में कमाल हासिल है।
1: That's a rare combination.
2: अक्ता साहब तो मेरी यूं ही तारीफ कर रहे हैं, मैं तो नहायत ही मामूली लड़की हूँ।
0: भाई ऐसी बात नहीं है।
4: साहब अभी फोन पर यह संदेश आपके लिए आया है।
0: अच्छा देखो। आई एम सॉरी अलका, मुझे फौरन बुलाया।
5: क्या हुआ?
0: अब्बा जान की तबीयत एक खराब हो गई। सॉरी हरीश।
5: चलो चलो हम भी चलते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, उन्हें हर महीने 15 दिन में ऐसे दौरे आते ही रहते हैं। कॉफी के बाद तुम अलका को घर तक छोड़ दोगे हरीश? प्लीज।
2: जी नहीं, इनको क्यों तकलीफ देते हैं, मैं चली जाऊंगी।
1: मैं छोड़ाऊंगा।
0: ओके ओके ओके हरीश, आई एम सॉरी फॉर टीचिंग यू।
1: कोई बात नहीं कोई बात नहीं।
0: ओके
6: रितु, हरीश आखिर गायब कहाँ हो गया?
2: क्यों, क्या हुआ पापा?
6: हरीश का कई हफ्तों से पता नहीं, थोड़े दिन पहले तक मैंने उसे एक बदनाम लड़की के साथ कई बार घूमते फिरते देखा था।
2: समाज तो हर अकेली लड़की को बदनाम करता है, और लड़की के साथ घूमने में क्या दोष है?
6: हाँ साधारण तौर से कोई दोष नहीं, लेकिन रितु वो सचमुच ही खराब लड़की है।
2: लड़की खराब होगी पर हरीश बहकने वाला आदमी नहीं है।
6: हरीश कितना बहक सकता है ये उस शाम हम दोनों ही देख चुके हैं रीता। आम सड़क पर एक लड़की की कमर में हाथ डाले नशे में लड़खड़ाते देखकर हरीश के चाल चलन पर शक करने की काफी गुंजाइश है।
2: पापा आपने पहचानने में भूल की है, वो हरीश नहीं होगा।
6: मैंने तब भी कहा था और अब भी कहता हूँ, मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया, वो हरीश ही था। इतना ही नहीं उसने भी हमें देख लिया था, तब से हरीश को किसी ने नहीं देखा। और मैं उस लड़की को भी जानता हूं, उसका नाम है अलका, वो एक्टिंग करती है, नाचती है, गाती है।
2: पापा आपको आज क्या हो गया है, अभिनय नृत्य और गायन को आप कब से खराब मानने लगे?
6: जब से अलका जैसी बच्चन लड़कियों को इन कलाओं की आड़ से शिकार करते हुए देखा है। रीता मेरा विरोध एक्टिंग और नाचने से नहीं है, विरोध है अलका से, वो बच्चलन है। अभी उस दिन डीएसपी मित्रा बतला रहे थे कि पुलिस की उस पर कड़ी नजर है, स्मगलिंग से लेकर चोरियों तक में उसका नाम है, कुछ दिनों से वो एक नए गिरोह के साथ देखी जा रही है। मैं पूछता हूं हरीश का उसके साथ क्या काम?
1: अरे ये क्या, तू तो रोने लगी पगली कहीं की।
2: मैं रो कहां रही हूं?
6: शायद इन सबके लिए जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं रुकने को नहीं कहता तो शायद हरीश भटकता नहीं।
2: पापा मैं आपको दोष नहीं देती।
6: दोष मेरा है, मैंने सोचा था कि हरीश अगर बेकारी की हालत में शादी करेगा तो उसे पैसों के लिए तुम पर निर्भर करना पड़ेगा। समाज तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में देखकर हरीश की बेकारी पर उंगली उठाएगा, हरीश में हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर आज तेरी मां जिंदा होती तो शायद ये भूल न होने देती। शादी हो जाने से शायद हरीश भी रास्ते से नहीं भटकता।
2: पापा पापा हरीश के आदर्श काफी मजबूत हैं, आज अगर भटक भी जाएगा तो उसे ठीक रास्ते पर आने में अधिक समय नहीं लगेगा, अपनी मंजिल वो जानता है। आप जानते हैं जिस जगह पर मैं काम कर रही हूँ वो हरीश की होती, उसने जानबूझकर इंटरव्यू में गलत सलत जवाब देकर अपना रास्ता बंद करके मेरे लिए जगह की। इंटरव्यू के बाद प्रिंसिपल

0: दीक्षित ने उसे बहुत डांटा था। हरीश उनका प्रिय छात्र था।
1: दीक्षित ने मुझसे भी कहा था, हेतु शायद हर नौजवान में शहीद कहलवाने की तमन्ना रहती है।
0: पापा, आप हरीश के साथ अन्याय कर रहे हैं।
1: हाँ, शायद इसीलिए, क्योंकि वो मेरी प्यारी बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। न जाने वो इस वक्त कहाँ है और किन हालात में है। वो कात कुंडों के गिरोह से बच सकता है, कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता।

0: पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है।
1: हरीश, बेकारी तुमने करवाहट पैदा कर ली। ये मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है।
2: ये भी गौर तलब है कि इंकलाब से ज्यादा नई बुद्धियां पैदा करता है, और अक्सर होता यह है कि बुलंद इरादों के लिए ऐसे रास्तों पर चल निकलते हैं कि मंजिल दूर के दूर रह जाए।
3: देखो तुम हमेशा रिएक्शनरी रहते
0: लगता है, जैसे अपने तमाम आदर्शों को भुलाकर मैं एक अनजान रास्ते की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी ऊंची डिग्रियां हासिल की थी? मैं जानता हूँ मैं समाज का एक हिस्सा हूँ, और समाज के प्रति मेरा भी अपना कोई दायित्व है। लेकिन अब मैं किस हद तक इसे निभा सकूंगा नहीं कह सकता, नहीं कह सकता।

0: जहन्नुम में ले आए हो।
1: इसे तुम जहन्नुम कहते हो मेरे यार? ये नए जमाने की जन्नत हुरे हैं जिनके हाथों में लाल मय से भरे हुए पैमाने हैं। ये जन्नत है तरक्की पसंद नौजवानों की जो सड़ी गली पुरानी दुनिया को तोड़कर एक नए समाज और एक नए जहां की तामीर करने का दम रखते।
2: शराब पीना और बैंक लूटना और शराब पीना, क्या नई दुनिया बनाने का यही तरीका है?
1: शराब का एक प्याला चंद लम्हों में दुनिया बदल देता है मेरे दोस्त।
2: दुनिया ऐसे नहीं बदला करती, मैंने भी पीकर देखा है अख्तर। हम बदल जाते हैं तो समझते हैं दुनिया बदल गई। दुनिया बदलती है जब कोई बड़ा विचार, कोई ऊंचा आदर्श करोड़ों इंसानों के दिलों में झंझराहट पैदा करता है और क्रांति का राग बनकर दुनिया को झकझोर देता है। बदबूदार तंग कोठरियों से क्रांति नहीं सिर्फ बदबू निकलती है।
0: अरीश, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पहले एक्शन में तुम्हारा ये हाल है?
2: अगर रात के अंधेरे में बेगुनाह और बेखबर चौकीदारों की हत्या कर बैंक लूटने वाले लोग बहादुर हैं तो मैं सचमुच बुजदिल हूँ।
0: जब एक्शन के लिए सब तैयारी हो चुकी है तब तुम्हारा झिझकना गद्दारी है। अलका बैंक एजेंट को बनाकर चाबियों की छाप ले आई थी, नकली चाबियां तैयार है। 10 मिनट के एक्शन में कम से कम 2 लाख रुपए हमारे हाथ लगेंगे। अलका तो कह रही थी कि तुम तैयार हो।
2: अलका की बात मत करो, मुझे उसके नाम से चिढ़ है। औरत नहीं, वो नागिन है।
0: तुम उसे नागिन कहते हो? तुम जो अपने गले में नगीने की तरह उसे लटकाए घूमते थे। हरीश, तुम पाखंडी हो।
2: शट अप,
0: जबान संभालो हरीश। पुरानी दोस्ती का लिहाज ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर तुमने जहर गोला बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा।
2: शराफत की नकाब उतर जाने के बाद अब तुम्हारा असली चेहरा उभर आया है।
0: हरीश,
3: ये सब क्या है?
0: हरीश गद्दार है मेजर।
3: क्यों हरीश, क्या बात
2: है? मेजर, मुझे इस एक्शन में विश्वास नहीं है, मैं इसे गलत समझता हूँ।
3: तुम्हें ये समझने में इतना समय लग गया? तुम्हारी ट्रेनिंग और खाने पीने पर हम हजारों रुपए खर्च कर चुके।

0: हम जो कुछ कर रहे हैं समाज के भले के लिए।
1: समाज के भले बुरे का निश्चय करने के पहले समाज की राय भी ले ली जानी चाहिए।
2: ये बकता है मेजर।
0: हम जानते हैं कि जनता की भलाई किस बात में है।
1: आपके कई एक्शन और उसके बाद पैसे के दुरुपयोग को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपका कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। आप समाज से भागने वाले लोग हैं जिन्होंने बंदूक का रास्ता अपनाया है, ताकत का नशा करने के लिए, अपनी स्वार्थी हिंसात्मक भावनाओं को खुलकर खेलने का मौका देने के लिए, औरत और शराब के लिए। आप लोग सफेद पोश डाकू हैं, डाकू हैं आप लोग।
0: हम लोग सफेद पोश डाकू हैं। अख्तर, तुम इस आदमी को हमारा दल मजबूत करने के लिए लाए थे या इसे रास्ते से हटाकर इसकी प्रेमिका को अपना बनाने के लिए?
2: ये आप क्या कह रहे हैं मेजर?
0: काफी दिनों से मेरे पास ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि तुम मिस रीता सिन्हा को अपना बनाना चाहते थे
2: मेजर।
0: इसीलिए तुमने हरीश के बारे में हमें गलत जानकारी देकर दल में भरने की साजिश की
2: मेजर।
0: शायद तुम्हारा प्लान हरीश को एक्शन में किसी बहाने गोली मारकर खत्म कर देने का था।
1: अख्तर, तुम जलील हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी।
2: हाँ, मैं जलील हूँ लेकिन तुम मेरे चंगुल से बचकर नहीं जा सकते। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।

0: ओहो, कौन है इतनी रात गए?
1: अरे हरीश, तुम क्या हुआ?
0: खून?
1: अरे तुम तो घायल हो, तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। चल

0: हेलो, रीता स्पीकिंग।
1: हेलो, कौन? रीता?
0: जी हाँ, मैं रीता बोल रही हूँ।
1: देखो रीता, मैं सचिन बोल रहा हूँ।
0: अरे सचिन, हाँ हाँ मैं हूँ रीता।
1: हरीश को घायल हालत में बड़े अस्पताल ले आया। हाँ, पैर में गोली लगी। हाँ, ऑपरेशन हो रहा है। वैसे घबराने कोई बात नहीं, आशो को तो जल्दी चली आओ। अच्छा
0: अच्छा अच्छा मैं अभी आती हूँ।
2: क्या बात है रितु, किसका फोन था?
0: सचिन का फोन था। पापा, हरीश आ गया है, मैं जा रही हूँ।
2: कहाँ आ गया हरीश? रितु,

0: कैसी तबीयत है हरीश?
1: ठीक हूँ।
0: तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, कहीं तुम्हारा पैर?
1: दोनों पैरों पर चलकर जो मंजिल नहीं मिल सकी थी वो एक पैर पर चलकर मिल गई, ये क्या सफलता नहीं है? तुम मेरे साथ रहो रीता, तो सब मंजिलें मिल जाएंगी और सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा चलने के लिए तैयार हूँ। मैंने सीधा रास्ता देख लिया है, रास्ता सच्चाई की तरफ है और उसी पर मुझे चलना चाहिए था। काश काश मैंने तुम्हारे और अपने अंतर की बात सुन ली होती, लेकिन अब मुझे मेरी मंजिल मिल गई है।
2: वो मंजिल कहाँ? अभी आपने डॉक्टर रणवीर सक्सेना का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे स्वतंत्र कुमार ओझा। नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
4: मैं और मेरी तन्हाई,
3: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत,

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज हम लेकर के आए हैं संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मन्ना किनी जोशी ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग।
2: सभी सुनने वालों को आपकी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है एक बहुत ही प्रसिद्ध शख्सियत को। जी बिल्कुल, ठीक मेरे सामने बैठे हैं मुस्कुराते हुए जाने माने फिल्म संगीतकार की जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन साहब, और हम उनका स्वागत करते हैं विविध भारती के स्टूडियो में। तो स्वागत है आपका दिलीप सेन साहब जी।
3: नमस्कार जी। नमस्कार विविध भारती सुनने वाले सभी श्रोता गणों को। दिलीप सेन यानी दिलीप सेन समीर सेन का प्यार भरा नमस्कार।
2: आप कैसे हैं बताइए।
3: बहुत बढ़िया हूँ। वापिस आपने याद ताजा कर दी मेरी
2: जी।
3: बरसों पहले आया था तो चाचा भतीजे दोनों साथ में आए थे।
2: बिल्कुल।
3: और इस बात किसी कारण समीर जी के पास वक्त नहीं था, मगर कोई बात नहीं, सवाल तो वही है जो दोनों को बोलने हैं। मैं बोलूं या चाहे वो बोले।
2: बिल्कुल, हम तो आप में ही दोनों रूप देख लेंगे।
3: थैंक यू जी।
2: तो आज उन्हीं दिलीप सेन साहब को सामने बैठा देखकर मैं तो बहुत अभिभूत हूँ।
3: धन्यवाद जी। मैं भी बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मेरे अतीत में ले गए पुराने
2: जी।
3: और विविध भारती आकाशवाणी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हमारी चार पीढ़ियां जुड़ी हुई है। मेरे पिताजी जमाल सेन जी
2: जी,
3: जो 1935 में मुंबई आए थे और एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया, जिनमें उन्होंने ढोलक डफ मटका और डेरू जो फिल्म में बजाना उन्होंने ही शुरू किया था
2: जी। जी
3: उस वक्त वो गुलाम हैदर साहब के साथ में लाहौर से आए थे। 51 में उनको पहला मौका दिया केदार शर्मा जी ने एज ए म्यूजिक डायरेक्टर शोकिया फिल्म से
2: जी।
3: तो पिताजी ने रंगीला, धर्मपत्नी, पतित पावन, आला उदल, कई फिल्में की, बगदाद वगैरह, कसूरी, मंचली। उसके बाद में बड़े भाई साहब आए 70 के दशक में, शंभू सेन जी। 80-90 के दशक में हम चाचा भतीजे दिलीप सेन समीर सेन आए
2: जी।
3: 2006 में मेरा पोता सोहिल सेन जी आए और 2026 में अभी मेरा पड़पोता समर भी आ रहा है
2: जी।
3: तो ये पांच पीढ़ियां हो जाएगी हमारी संगीत क्षेत्र में।
2: जी बिल्कुल सही कहा आपने।
3: हम लोग बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हमें श्रोतागणों ने, दर्शकों ने और प्यार करने वालों ने, फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसरों ने, जनता ने इतना प्यार और इतना दुलार दिया कि आज चार पीढ़ियां नहीं, पांचवी पीढ़ी भी संगीत देने के लिए मतलब उत्साहित है
2: जी, जी।
3: और बहुत बड़ी बात होती है कि 1935 से लेकर 2026 तक अगर किसी का परिवार फिल्म लाइन में सक्रिय है तो वो सिर्फ सेन परिवार है
2: जी,
3: जो जमाल सेन जी से लेके समर तक
2: जी।
3: मैं सेन परिवार का एक अलग योगदान रहा है, वो मैं अलग इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि मेरे परिवार में सिर्फ संगीत ही नहीं रहा। जैसे मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ फोक और कथक का।
2: बिल्कुल।
3: मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी फोक और कथक के डांस मास्टर रहे। फिर मेरे बड़े भाई साहब मदन सेन जी जो भी डांस मास्टर सिंगर एज ए कंपोजर रहे, और उनके बाद में तान सेन जी वो सितार वगैरह बजाते थे। फिर इंदर सेन जी जो थे वो मैंडोलिन वगैरह बजाते थे। उनसे छोटे निहाल सेन वो सितार मैंडोलिन और डांस वगैरह वो भी करते थे। छठा मैं छठा मैं था दिलीप सेन। तो करते करते निकला और एक उम्मीद होती है इंसान को कि कुछ बड़ा बनना है, और फिर आप लोगों का आशीर्वाद हुआ तो संगीतकार बन गए।
2: बिल्कुल, और एक बहुत बड़े और सफल संगीतकार, जाने माने संगीतकार के रूप में आप हमेशा रहे। तो आपका घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है
3: जी, जी।
2: आपके परिवार का संगीत सफर जो है लगभग चार या छह पीढ़ियों से, अब तो कहेंगे छठी पीढ़ी से चला आ रहा है, और इस संगीत परंपरा को आधुनिक रूप देने में आपके पिता जमाल सेन साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आप अपने पिता के बारे में थोड़ा और बताइए।
3: उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआत की कलकत्ता रेडियो से। वहाँ पखावज और जलतरंग बजाते थे, और कलकत्ता में उन्होंने टैगोर साहब के साथ, टैगोर दा के यहाँ
2: अच्छा
3: शांति निकेतन में कुछ साल एज ए क्लासिकल संगीत टीचर के हिसाब से काम भी किया।

0: मतलब टैगोर साहब मतलब रविंद्रनाथ
1: टैगोर जी के यहाँ शांति निकेतन में
0: अच्छा
1: कुछ साल रहे
0: हुँ.
1: और वहाँ अपना हिंदी शास्त्रीय संगीत जो होता है क्योंकि उनका तो रविंद्र संगीत होता है
0: हुँ.
1: उनके साथ हमारा जो संगीत शास्त्र है
0: हुँ.
1: तो वो पिताजी सिखाते थे वहाँ कुछ साल
0: हुँ.
1: बाद में 1923-24-25 में वो चले गए लाहौर
0: हुँ.
1: वहां पे फिर पंचोली स्टूडियो जो था जिसमें गुलाम हैदर साहब के साथ एज ए म्यूजिशियन उन्होंने काम किया और 1935 में वो मुंबई आए. अब मुंबई आने के बाद में उन्होंने एज ए म्यूजिशियन तो काम किया ही किया गुलाम हैदर साहब के साथ में, कुछ फिल्मों में एज ए करेक्टर आर्टिस्ट भी उन्होंने काम किया, खजांची मुनीम जी वगैरह में. क्योंकि मेरे पिताजी का एक पहनावा होता था, वो कान के अंदर लॉन्ग रखते थे
0: जी.
1: उस जमाने में डायमंड सस्ता ही था तो डायमंड के लॉन्ग रखते थे, बड़ी बड़ी मुछें होती थी और धोती कुर्ता पहनते थे बंगाली स्टाइल का
0: जी जी.
1: तो एक उनका एक अलग व्यक्तित्व होता था.
0: हाँ.
1: तो उस हिसाब से उनको काम भी मिलता गया. सुजानगढ़ के रहने वाले हम लोग राजस्थान में, और हमारे यहाँ से और भी बहुत बड़े कलाकार हुए हैं जिनमें सबसे बड़े कलाकार का नाम मैं लेना चाहूंगा जिसमें मुझे फक्र होता है, हमारे खेमचंद प्रकाश जी.
0: खेमचंद प्रकाश
1: वो भी हमारे ही गाँव से थे, सुजानगढ़ से
0: जी.
1: और एक हमारे कवि बहुत बड़े कवि हुए कन्हैयालाल सेठिया जी.
0: बिल्कुल.
1: वो भी मतलब हमारी धरोहर है ये राजस्थान की.
0: और वही आपके सुजानगढ़ के पास चुरू से थोड़ा पास बीकानेर शहर से जो है पंडित भरत व्यास.
1: भरत व्यास जी है, गुलाम मोहम्मद जी,
0: गुलाम मोहम्मद साहब.
1: और भी आज मैं कहते हुए मुझे फक्र होगा और मुझे अभिमान भी होता है इस बात पे कि अभी तक जितने भी रिदमिस्ट हुए हैं आप शुरू से लेके अब तक देखेंगे तो सारे राजस्थान से ही हुए हैं. और एक बात और बता दूं मैं, डांस मास्टरों में भी हीरालाल सोनलाल जी वो भी सुजानगढ़ से ही थे जो इनका डंका बजता था, जिनके सरोज जी, चिन्नी प्रकाश जी, तरुण जी, कमल मास्टर जी, ये सारे हमारे एक परिवार की तरह हम लोगों ने काम किया है. तो हम लोगों को मतलब संगीत के साथ साथ डांस का भी अनुभव रहा. और एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके प्रोग्राम के माध्यम से कि दुनिया में अगर कोई सच्ची चीज है आज अगर सुकून वाली तो वो सिर्फ संगीत ही
0: है. जी, जी.
1: जिसके जीवन में संगीत है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है.
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: बिल्कुल सही. तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं.
1: जी बिल्कुल, सुनिए.

0: आपने अपने भाई से शास्त्रीय संगीत और वाद्य यंत्र जैसे कि तबला आदि की विधिवत शिक्षा ली है और आप एक प्रशिक्षित नर्तक भी रहे हैं।
1: जी हाँ, कथक।
0: तो कथक के आप संगीत रहे कलाकार, तो कथक की दुनिया से, नर्तक की दुनिया से आप संगीतकार के रूप में कैसे इधर आ गए?

0: कि मैं आपको पहले एक बात बताना चाहता हूं कि संगीत जो शब्द बना है ये तीन चीजों से बनता है, गायन, वादन, नृत्य।
1: जी,
0: और गायन, वादन और नृत्य का अनुभव होना, अब तीन चीजों को मिलाने से बनता है संगीत, और संगीतकार इन तीन चीजों को लेके चलना। तो मेरी ये सोच है या मेरी ये समझ है, मैं अपने आप से कहूंगा कि एक संगीतकार बनने के लिए उसको इन चीजों का अनुभव होना जरूरी है। तो मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बेसिकली डांस मास्टर भी रहा और मैं डांस करता भी था, किया भी है। मैंने गोविंदा जी के साथ एक फिल्म मेरी आई थी अनाड़ी नंबर वन, जिसमें मैंने गोविंदा जी के साथ काम किया, जबकि गोविंदा जी स्टार हैं और सुपरस्टार के अलावा उनके सामने डांस करना इतना मामूली बात नहीं थी। फिर भी सरोज जी ने उन्होंने निभाया और वो गाना मेरा काफी लोगों को पसंद आया, आज भी लोग देखते हैं। तो नृत्य की एक रहा और उससे मुझे कंपोजिशन करने में बहुत मतलब आसानी रही, क्योंकि देखिए जब मैं कोई गाना कंपोज करता था, मैं और समीर जी जब बैठते थे, क्योंकि समीर जी भी कथक डांस सीखे हुए हैं।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने भी बाकायदा गणेश जी हमारे हुए हैं, गणेश मास्टर जी से उन्होंने डांस की तालीम ली, क्योंकि अब हम भले ही हमारे भाई साहब से हमने सीखा, मगर जब तक बाहर का कोई गुरु आप अगर अपना नहीं लेते हैं जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होती, क्योंकि घर वाला ही होता है वो, और बाहर वाला जब आता है तो वो एक गुरु की नजर से आता है।
1: जी।
0: तो हम लोगों ने वैसे तालीम ली। और उसके अलावा मैं बता दूं कि आप अगर हमारे कुछ गाने देखेंगे तो कोरस प्रधान गाना होता है। कोरस आपको जो हम लोग इस्तेमाल किए हैं अभी तक शायद भी मुझे नहीं लगता कि किसी संगीतकार ने किया हो। जैसे कि मिसाल पे जैसे मेरा एक गाना जो हिट हुआ था, पहला गाना हम लोगों का जैसे चला, उससे पहले जुल्म की हुकूमत आ गई थी, उसमें भी जैसे जो हिट हुआ था, जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, ताक धिना के दिने दिन दिन ना दिने ताक, अब ये दिन ताक धिना दिने गाने का पार्ट ही है। अब जैसे गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जा, टनारंग टनारंग टन टन, ऐसे भी कर सकते थे, मगर ताक धिना दिन आने से उसके एक अंदर एक ब्लाइंड हो गया। ऐसे ही एक गाना हमारा और चला था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले, तो इसमें ओले ओले एक पंचलाइन बने। फिर हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर शोर शोर अर ओरे, तो इस तरीके से जो कोरस पार्ट होता है हम लोगों का ये एक गाने की शक्ल में होता है। ये हमारे दिग्गज जितने भी बड़े जो गुणीजन जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, मेरी नजर में जैसे नौशाद साहब, खयाम साहब, मदन मोहन जी, शंकर जय किशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी, खेमचंद प्रकाश जी, मेरे पिताजी, या जयदेव जी, मदन मोहन जी, श्री रामचंद्र जी, बसंत देसाई जी, अपना ये जयदेव जी, सलील चौधरी जी, मैं इनको स्कूल मानता हूँ, क्योंकि ये स्कूल इसलिए मानता हूँ, खयाम साहब इन्होंने जो काम किया है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन जी, इनका काम देखेंगे तो एक एक लाइब्रेरी नजर आएगी आपको। जब आप लक्ष्मीकांत जी की तरफ जाते हैं तो वो एक अलग स्कूल है, शंकर जय किशन जी एक अलग स्कूल है, नौशाद साहब एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक अलग स्कूल है, ओपी नैयर साहब एक अलग स्कूल है, कल्याण जी अलग स्कूल है, एस डी बर्मन जी एक अलग स्कूल है, मदन मोहन जी एक, तो ये मेरे लिए एक स्कूल है।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें इनसे प्रेरणा मिलती थी, जब हम संगीतकार बने तो संगीतकार बनने के साथ साथ हमने इनको भी फॉलो किया, इनको भी सुना। मेरा ये आपके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये सुन रहे हैं
1: जी,
0: और जिनको फिल्म लाइन में आके अगर संगीतकार बनना है तो वो बनने से पहले अपने गुणीजनों को सुनो कि हमारे पहले क्या म्यूजिक दिया लोगों ने। देखिए आज का साउंड जो है वो ठीक है, अपनी जगह है, क्योंकि टेक्नो साउंड भी जरूरी है, क्योंकि समय समय पर संगीत बदलता है, वो अपना चोला चेंज करता है, मगर मेलोडी जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी रागे हैं, जो हमारा फोक है, जो हमारा कल्चर है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए, जो आजकल संगीत के अंदर नहीं मिलता आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो मेरी 90 के दशक तक हम लोगों ने जितनों ने भी काम किया वो राइटिंग वाइज, कंपोजिशन वाइज, मेलोडी वाइज, हम लोगों ने वो चीज छोड़ी नहीं। और इसमें सबसे ज्यादा अगर हमको कोई सपोर्ट मिला 90 के दशक में, तो मैं इसकी सारी क्रेडिट, बाकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी जगह है, चाहे वो यशराज हो, गुड्डू धनवा जी हो, कुकू कोहली जी हो, दीपक सरीन जी हो, नरेश मल्होत्रा जी हो, के रवि शंकर जी हो, राहुल गुप्ता जी हो, और भी कई लोग हैं, मगर इनमें एक शख्सियत ऐसी थी जिनका नाम है गुलशन कुमार जी।
1: जी,
0: गुलशन कुमार जी के आने से म्यूजिक में एक अलग
1: क्रांति आ गई,
0: क्रांति आई, और एक ऐसा बहाव आया कि जिस वक्त आप

0: समझ लीजिए कि 90 के दशक के हम जो म्यूजिक डायरेक्टर थे या हम लोगों ने जो काम किया वो आज भी सुना जाता है। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली रहे कि जब तक हम लोगों ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम हमारी परंपरा को और हमारे कल्चर को हम लोग संभाल के रख सके।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो दिलीप सेन साहब, जैसा कि बात चल रही थी कि आपका जो घराना है शास्त्रीय संगीत का घराना है और आप लोगों ने विधिवत शिक्षा ली एक डांसर के रूप में और संगीत के रूप में, पहली फिल्म आपको कैसे मिली जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, और किस तरह से 90 के दौर में अपना पहला ब्रेक पाने का जो अनुभव था वो कैसा था, किस तरह से फिल्म मिली?
0: फिल्म मैं बता दूं आपको, जब डांस मास्टर था तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: डांस मास्टर 70 के दशक में क्या था कि 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा चलता था।
1: हाँ।
0: और बसों की टिकट होती थी 5 पैसा 10 पैसा 15 पैसा 20 पैसा 25 पैसा और 50 पैसा अंधेरी अगर आना हो तो। हाँ। बोरीवली से। तो हम लोग क्या करते थे कि डांस मास्टर के नाते कि यार ये 5 पैसा या 10 पैसा बचाना है तो हम 2 स्टॉप पैदल चल लेते थे।
1: हाँ।
0: या कभी 3 स्टॉप पैदल चल लेते थे कि यार ये 10 पैसा 5 पैसा बच जाए। तो वो सब समय देखा हुआ था तो जहन में एक, जब मैं सुजानगढ़ से मुंबई आया
1: जी,
0: तो फिल्मों में एक्टर बनने आया था, तो शक्ल तो हीरो जैसी थी नहीं कि हीरो बन जाऊं, और इतने कोई पढ़े लिखे भी हम नहीं थे कि हम कोई करेक्टर रोल में या निकल जाएं। तो पिताजी ने मुझे दूसरी लाइन में पहले ट्राई किया कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं, बाद में उन्होंने देखा कि ये कहीं नहीं जमेगा, तो मेरे बड़े भाई थे मदन सेन जी, उनके साथ ऐसे मुझे असिस्टेंट के बतौर रखा लिया कि भाई तू भाई के साथ रहे। तो उन्होंने एक स्कूल खोली, तो वो स्कूल खोलना, उसमें जो बच्चे आते थे उनको अटेंड लेना, उनको देखना। तो देखते देखते तीन चार साल में मैं इस लायक हो गया कि मैं बच्चों को ट्रेनिंग दे सकूं।
1: अच्छा।
0: तो वो जो चीजें थी तो आगे बढ़ने के लिए एक था कि यार, मतलब उस जमाने में आप यकीन मानिएगा, जैसे 5 रुपया मेरे पास थे तो मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बैंक में खाता खोला, तो मेरे एक सहकारी बैंक थी तो उस बैंक में मैंने 5 रुपये का खाता खोल लिया। अब 5 रुपये के खाते के लिए वो चेक लगता था, फोटो लगती थी कि जब आप चेक लेने जाएंगे या पैसे दो के 2 रुपया या 1 रुपया या 8 आना लेना है
1: बिल्कुल,
0: तो बैंक में आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड के हिसाब से फोटो दिखानी पड़ती थी। तो एक बहुत लिमिटेड बजट होता था और बड़ा आदमी बनना था। तो मैं अक्सर, मेरे जो पार्टनर समीर सेन जी हैं ये प्रकाशन में नंबर 1 है इंडिया के, एक माने हुए प्रकाशन हैं जो कि रिदम में, मतलब अभी भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता, चाहे ढोलक तबला कोंगो बोंगो तुम्बा ये जो वो प्ले करते हैं, अभी मुझे नहीं लगता कि उनके बराबरी में कोई ऐसा म्यूजिशियन हो।
1: जी।
0: वो इसलिए नहीं कि मेरा भतीजा है,
1: नहीं नहीं, जो
0: क्योंकि जो उनकी अपनी मेहनत थी, लगन थी, बड़े भाई साहब ने उनको उस तरीके से तैयार किया था, उनको तालमनी टाइटल भी मिला हुआ है। मैं उनसे अक्सर बोलता था कि यार बड़ा आदमी बनना है यार, तो बोले क्या बड़ा आदमी कैसे बनोगे चाचा, तुम डांस मास्टर हो, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, क्या बनना चाहते? तो मैं बोले यार अपन संगीतकार बन जाएं।
1: तो एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपकी और संगीत यात्रा पर चर्चा करते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: 80 के दशक में संगीतकार बनना इट इज नॉट जोक। उसने बोला यार मेरी अच्छी खासी दुकान चल रही है म्यूजिशियन में, मैं दिन में दो दो तीन तीन टेक बजा रहा हूँ, मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। उस वक्त 150-200-300 रुपया म्यूजिशियन को एक गाने का मिलता था, वो तीन चार गाने बजाए तो 1000 रुपया रोज मिल जाता था। बोले ये खामों का म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा, लोग बुलाना भूल जाएंगे। अरे मैं बोला कोशिश तो करके देख, तो वो माने नहीं। तो उस दौर में क्या हुआ कि मैं रहता था महाकाली में, शमशाद खान इकबाल खान के यहाँ, तो वो एक फिल्म बना रहे थे प्यारी भाभी। तो एक उम्मीद थी कि यार ये फिल्मी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं पहली मर्तबा उनके यहाँ लग गया कि चलो यार इन्हीं के यहाँ रहता हूँ, थोड़ा माहौल भी मिलता था। वहां असद भोपाली साहब आते थे।
1: अच्छा, गीतकार।
0: गीतकार असद भोपाली साहब जब मुझे देखते थे, वो कोई लाइन लिखते थे तो मैं उस पर कोई ऐसी डमी धुन बना देता था। तो मुझे हर बार शाम के वक्त जो बैठक होती थी इन लोगों की, बड़े लोगों की, हम तो खैर बच्चे ही थे उस वक्त, तो उस बैठक में मेरे को मौका मिलता था उनको धुन बना के सुनाने का। कभी कभी वो दिन में मुझे बोलते थे यार तेरे में जम्स है, तू म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, तेरे पिताजी वाली बातें हैं तेरे में, क्योंकि मेरे वाली साहब के काफी नजदीक में थे वो
1: जी।
0: तो मैं असद वो वाली साहब को बोला मैं चाचा कौन, मुझे कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा। उन्होंने एक दिन एक सीटिंग रख दी, बोले काम पर दो दिन बाद मैं तेरे को एक जगह लेके जाऊंगा, मुझे बताया नहीं कहां ले जाएंगे। मैंने जाके समीर जी को बोला, समीर सेन जी को, मैं बोला बेटा ऐसा ऐसा है, समीर यार एक जगह सीटिंग है, अपने को फिल्म मिल सकती है। तो वो हंसने लगा, भाई साहब हंसने लगे, बोला तुमको कौन म्यूजिक डायरेक्टर लेगा यार, कौन इतना ऐसा बड़ा आदमी आ गया जो तुमको लेगा। मैं बोला जाके आने में क्या बुराई है। बोले जाओ। तो हम गए साहब, हम लोगों को सोचा कि शायद ये तो म्यूजिशियन है, कोई इनका बड़ा आदमी आएगा तो सुनाएगा। तो हम लोग 10-11 बजे गए, तो 3-4 बजे तक कोई हमारी से सुनवाई नहीं। तो असद

0: कोतवाली साहब ने जगदीप साहब को बोला, यार जगदीप तुम आ जा गाने सुन ले। तो बोले इनका कौन सुनाने वाला कौन है इनमें, बोले यही बच्चे, बोले ये बच्चे सुनाएंगे। ये तो किसी एंगल से ही लग रही थे मुझे, डॉक्टर वाकई में नहीं लग रहे थे। अब इस एंगल में तो कोई शक्ल तो थी नहीं हमारी,
1: बिल्कुल,
0: और दुबले पतले से थे हम। तो खैर उन्होंने जब सुना, सुनने के बाद में आप यकीन मानिए हम लोगों ने 4-4:30 बजे शुरू किया, रात के 12-1 बज गए। 12-1 बजे के बाद में उन्होंने कहा कि भाई देखो गाने तो तुम्हारे काफी अच्छे लगे हमको, हम खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा ओके करें कौन सा नहीं करें, आप सुबह आ जाइए, आप हमारी फिल्म कर रहे हैं। तो मेरे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हम सुबह पहुंचे, उस वक्त मैं जगदीप साहब एक फिल्म कर रहे थे मोहब्बत, जिसमें अनिल कपूर, विजेता पंडित और जगदीप साहब थे। तो वो शूटिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं घर पहुंचा, बोला भैया तुम लेट हो गए हो, मैं तो निकल रहा हूँ, बच्चे लोग हैं तुम अंदर चले जाओ। तो हम अंदर गए तो एक छोटा सा लेटर था, वो साइन करवाया हमको, एक छोटा सा लिफाफा दिया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं बोला भाई पिक्चर मिल गई
1: जी।
0: तो आप यकीन मानिए कि वो खुशी खुशी हम खुश हो गए।
1: वो फिल्म सुरमा भोपाली,
0: सुरमा भोपाली। मगर इस बात के लिए मैं एक चीज के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा जगदीप साहब को, उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई कि एक सिचुएशन पे एक ही मुखड़े की कितनी धुन बन सकती है। तो ये स्टाइल उन्होंने सिखाया मुझे, तो मैं उनके यहां सीखता गया। उन्हीं के यहां मैंने एडिटिंग सीखी, उन्हीं के यहां मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक सीखा, फोली क्या होता है, जो इफेक्ट वगैरह होते हैं फिल्म के, यानी टोटल मेकिंग जो होती है फिल्म की, वो 5 साल में मैंने जगदीप साहब के यहां सीखी, जो मुझे बाद में इतना बेनिफिट की वो चीज कि आज जब मुझे, मतलब जब मैं सक्सेस हुआ तो मेरी सक्सेस में कहीं ना कहीं जगदीप साहब का भी हाथ है
1: जी।
0: जैसे गुलशन जी को हम मानते हैं
1: जी, जी।
0: मगर कंपोजिशन बनाने में जगदीप साहब का हाथ रहा। तो आज अगर एक सिचुएशन आती है, तो जैसे एक एग्जांपल अगर आप बुरा ना माने तो सुनाना चाहूंगा, हमने ये दिलगी के सारे गाने कंपोज कर लिए थे। तो यश जी ने कहा कि मुझे तानसेन बोलते थे
1: जी।
0: बोले तानसेन मेरा ये जो लड़का है ये करोड़पति घर का है मगर प्ले बॉय है। तो प्ले बॉय मतलब मैंने, वो क्या होता है, बोले बिगड़ा हुआ। तो मैंने समीर राइटर जो हमारे अनजान है, मैं बोला यार बिगड़ा हुआ लड़का करोड़पति का क्या अलग होता है, या वो झोंपड़पट्टी का अलग होता है क्या, ये बिगड़ा हुआ क्या कर, बोला ये भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला गरीब वाला, बोला ये झोंपड़पट्टी वाला भी लड़कियां छेड़ता है। मैं बोला यार धुन क्या बनेगी, तो हमने इसकी जगह धुन बनाई एक, पहले प्यार में दिल का मुर्गा बोले कुकड़ू कू आई लव यू तू ना धुन तू धुन तू ना धुन तुम,
1: बिल्कुल।
0: फिर उसके बाद में एक धुन इसी सिचुएशन पे बनाई, वो ये दिल तेरा है दीवाना अय्यो अय्यो, फिर इसी सिचुएशन पे तीसरा गाना हमने बनाया अपना, ये जब भी कोई लड़की देखू मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। मगर हम अक्सर ये दो धुने यश जी को सुनाते थे, ये गाना सुनाते ही नहीं थे। तो इसका ये रहा कि ये हमको 2-3 महीने हो गए, अब ये गाना, बाकी गाने सब कंपोज हो गए। यश जी का क्या सिस्टम था कि सारे गाने कंपोज करवा लेते थे, और सारे गानों की राइटिंग और धुन और म्यूजिक तक फाइनल करके फिर रिकॉर्डिंग में जाते थे। ऐसे ही हमने आईना की थी, तो सेकंड पिक्चर के लिए भी सारे गाने कंपोज हो चुके थे, खाली ये एक बचा था। तो ये हम सुनाते नहीं थे, क्योंकि इसका जो वर्ड था, जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, मैं बोला कहीं यश जी ये नहीं पूछ ले यार ये ओले ओले क्या है, तो फिर क्या जवाब दूंगा,
1: जैसे इलू इलू क्या है, ये प्रश्न उठा था।
0: नहीं ओले तो देखिए, ओले मराठी में ओले बोलते हैं गीलेपन को,
1: अच्छा,
0: और वैसे ओले जो गिरते हैं।
1: इस पर मैं बात करूंगी आपसे, क्योंकि ये गीत कैसे रचा गया था। पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं, आप बताइए और थोड़ा गा के सुनाइए, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
0: मैं
1: अपना ही
0: आपको एक बात बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा फॉलो करता हूं इनको, अपना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को।
1: अच्छा,
0: इनका एक गाना मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, वो इसलिए पसंद है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, ये जो अंदाज था उनका ये कमाल था।
1: तो ये गीत सुन ले
0: जी,
1: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: बात चल रही थी दिलीप सेन साहब की गाना कैसे बनते हैं। आपने कहा कि आशा भोसले की आवाज में आपने पहला गीत ये रिकॉर्ड किया था जिसका जिक्र, तो उनके साथ आशा ताई के साथ काम करने का ये जो नया नया अनुभव था जब आप बिल्कुल नए थे, कैसा रहा?
1: मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि मंगेशकर परिवार जो है, मेरे परिवार से वाबस्ता तो था ही, क्योंकि पिताजी को जानते थे, फिर बड़े भाई साहब को जानते थे
0: जी।
1: तो वो एक रिस्पेक्ट, वो प्यार तो था उनके दिल में। मगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये तो जब उनके साथ बैठने से पता चला। पर आशा जी ने जब ये गाना सुना तो नुशा साहब आए हुए थे, तो गाने सुनने के बाद में समीर उनके साथ काम करता था पहले, अब मुझे देख के खुश भी हुई कि ये डरा डरा सा बोल डर नहीं, अच्छा कर रहा है तुम, बहुत अच्छा करता है। नुशा साहब को बोला कि नुशा साहब ये गाना उल्टा

0: रहे। तो फिर समीर जी को बुलाया उसने, आशा जी ने बोला समीर इधर आ, ये गाना क्रॉस से आता है तो उल्टा हो जाता है। समीर ने जब देखा बादल सताए हम लोग गाना लगा, तो वो मेरे को समीर बोलता है यार गाना तो उल्टा हो गया। तो मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी थे मेरे साथ, तो भाई साहब बोले भाई तू गाना बनाया तेरे को बनाते वक्त ध्यान नहीं था, अब इसको सम में कैसे लाएगा। मैं बोला भाई साहब ये 8 मात्रा का नहीं है, 4 मात्रा का है। बोले 4 मात्रा कैसे, मैं बोला लेजिम ठेका है, दिन ताक दे दिन आग दिन ताक दिन ताक दिन ताक दिन, तो 4 बीट का गाना है।
1: अच्छा
0: ये जो लेजिम एक आते हैं हमारे मराठी में, आपने देखा होगा बच्चों को सिखाया जाता है, तो मैं बोला उस ठेके पे बना हुआ गाना है
1: जी।
0: ये, 4 बीट का ही है, तो आप सम 4 बीट में लोगे तो ये परफेक्ट आएगा, आप 8 मात्रा में गिनोगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो रहा। तो आशा जी इस बात को नोट करती रही और उनको लगा, उन्होंने
1: कि एक नई बात है,
0: नहीं नई बात के अलावा उन्होंने समीर को बोला कि यार लगता है तेरे चाचा में कुछ बात है। तो ये उन लोगों के आशीर्वाद और दुआ रही। और मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक सपना होता है, बाकियों की बात नहीं कहूंगा मैं अपनी करूं, कि जिन्होंने मंगेशकर परिवार के साथ काम किया, जैसे लता जी के साथ आशा जी के साथ काम करना एक एक ड्रीम होता है। और वो ईश्वर ने यशराज फिल्म में मेरा कंप्लीट किया कि दोनों बहनों के साथ मैंने 2 फिल्मों में काम किया
1: जी,
0: आईना और ये दिल लगे में
1: जी। तो आप कितने भाग्यशाली रहे दिलीप सेन साहब कि एक शुरुआत में ही आपको यश जैसा बड़ा बैनर मिला, यश चोपड़ा जी का, और आईना और ये दिल्लगी जैसी फिल्में मिली, आशा जी और लता जी के साथ गाने का
0: मौका मिला।
1: बहुत बड़ी बात थी आपके लिए।
0: बहुत बड़ी नहीं, तो ड्रीम था, सपना
1: ड्रीम
0: था।
1: मतलब पूरा हो गया इतनी जल्दी, जो उम्मीद भी नहीं होती। तो कैसा लगा होगा, आपकी मनस्थिति क्या रही होगी, और लता जी के साथ काम करने का भी कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए आप।
0: देखिए दीदी के साथ तो पहले पहला तो मैं ये कहूँ कि दीदी की एक आदत थी कि वो बहुत सॉफ्ट बोलती थी।
1: अच्छा।
0: बात करने से पहले चश्मे को थोड़ा नाक पे लेती थी।
1: अच्छा।
0: फिर ऊपर करके कैसा बड़ा ठीक है, इतना सॉफ्ट बोलती थी
1: जी।
0: तो पहला गाना जब मैंने उनके साथ किया था गोरिया रे गोरिया रे, तो क्योंकि डरा हुआ था तो एकदम खुल के बैठ भी नहीं सकता था एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। तो सजना वे मेरी नींद उड़ा के ले जा तक दिनाग दिन दिन तीन ना, उन्होंने वैसे ही गा दिया
1: जी।
0: अच्छा मुझसे इन लोगों ने कहा था, क्योंकि जब डबिंग हो रही थी तो दीदी अकेली थी जब उनकी डबिंग के वक्त, क्योंकि उस वक्त ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मुझे ये कहा गया था कि बार बार टॉक बैक से इनको बोला नहीं जाता था।
1: अच्छा।
0: दीदी से अगर कुछ बात करनी हो तो आपको कट करके फिर उनके रूम में जहाँ पे सिंगिंग रूम है वहां जाके बोलना पड़ता था। तो मुझसे कहा गया था बिल्कुल कुछ नहीं बोलोगे, तुम चुपचाप बैठे रहो, गाना होने दो। गाना पूरा हो गया तो मैं ऐसे रहा नहीं गया। फिर मैं उठ के गया, दीदी को हाथ वाथ जोड़े, तो दीदी ने मेरी तरफ देखा मुस्कुराते हुए, पूछा कैसा ठीक हो गया। बोला दीदी गाना तो बहुत अच्छा हो गया, मगर एक जगह रह गई। फिर वो जरा क्वेश्चन मार्क से मेरी तरफ देखी, बोले मेरे से जगह रह गई, क्या जगह कैसे रह गई, कोई सुर कम लगा। मैं बोला नहीं नहीं सुर कम नहीं लगा, वो मींड रहेगी। बोले कैसे, बोला आपने गाया सजना वे मेरे नींद अकेले जा तक दिन आगे दिन, बोला हाँ ऐसे ही तो गाया है। मैं बोला यहाँ ये एक बार मेरा रह गया, तू कैसे चाहता था। मैं बोला सजना वे मेरे नींद अकेले जा तक, तो मैं बोला ये ले जा तक। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है मैं गाती हूँ। मैं बोला नहीं अब तो मेरे को गुस्सा करेंगे, रहने दीजिए हो गया, नहीं तो पूरा गाना गाना पड़ेगा। हाँ बोले मैं गाऊंगी ना। मतलब इतनी बड़ी स्टार सिंगर,
1: नम्रता, इतनी
0: नम्रता के अलावा उन्होंने मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं नया कल का लौंडा हूँ, जबकि उन्होंने मेरे पिताजी भाई साहब और उनके अलावा दिग्गजों के साथ काम किया हुआ।
1: लेकिन एक महान,
0: मगर उन्होंने ये देखा कि ये बच्चे ने काम किया है और ये जगह उसने सही बनाई है, तो मुझे इसको डोमिनेट नहीं करना है। उन्होंने सीधा प्रेम जी को बोला, टैगोर को बोला आप ये दोबारा करो मैं गाऊंगी, तो गाया और वो गाना कमाल हुआ,
1: बहुत सुंदर गाना।
0: तो ये दोनों बहनों में ये बहुत खास बात थी कि इतने प्यार से। और एक किस्सा आपको और सुनाना चाहता हूँ दीदी का। हम जब सेकंड पिक्चर कर रहे थे ये दिल लगी, तो उसमें एक गाने के लिए आई थी वो, गोरी कलाई कलाई में कंगना है कंगना ने लिया तेरा नाम वो सजे नाम।
1: वाह बहुत सुंदर।
0: तो दीदी को 12 बजे का टाइम हमने दिया था, तो हमारे पास पुरानी गाड़ी थी फिएट, तो हमको 12 बजे के बजाय 12:15 तक हम लोग पहुंचे। मैंने जाते ही दीदी के पैर छुए, माफी वाफी मांगी, तो फिर बैठी हुई गाना सुन रही थी, बोला नहीं नहीं ठीक है।

दूर रहते हो ना, कोई बात नहीं, मैं गाना सुन लिया है, बोल कैसे क्या करना है। मैं बोला ऐसा ऐसा है, गाना हो गया। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ 3 लाइन है आपकी। तो मेरी तरफ देखी और बोली क्यों, मैं अच्छा नहीं गाती क्या, गाने में 3 लाइन ही मेरी रखी है। मैं बोला नहीं दीदी वो गाना ही ऐसा है। कैसा है वो गाना? 3 सिंगरों का था।

0: से दिल की सुना उन्होंने, मैं बोला इस तरीके से, तो गाना ये भी हो गया। मैं बोला दीदी खाना आ रहा है गहलोत से। मैं बोला दीदी एक गाने में सिर्फ बातचीत करनी है। बोला क्यों, तूने धुन नहीं बनाई? मैं बोला नहीं, आपका एक गाना था ना वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, अच्छा तो हम चलते हैं।
1: हाँ
0: तो बोले क्या तूने वो चोरी किया है धुन? मैं बोला नहीं चोरी नहीं की है, मेरा गाना सुन लीजिए आप, वो कैसा है। मैं बोला नाम क्या है प्यारे का मारा, घर का पता दो दिल
1: दिल
0: है तुम्हारा,
1: तुम्हारा
0: क्या करते हो तुमसे प्यार, इसका नतीजा कुछ हो यार, नाम क्या है प्यारे का मारा। ये भी सुना उन्होंने, सुनते बोला ठीक है अच्छा है नया स्टाइल है गाती हूँ, ये भी गा दिया उन्होंने। तब तक खाने में थोड़ा और लेट
1: टाइम
0: हो रहा
1: लग
0: था।
1: गया। हाँ
0: मैं बोला दीदी अब खाना आने ही वाला है, एक काम कीजिए एक गाना सिर्फ आप सुन लीजिए, गाएंगे नहीं।
1: हाँ
0: बोला क्यों, तुझे मेरे पे कॉन्फिडेंस नहीं? मैं बोला दीदी बहुत है, ये मेरे दिल के करीब है।
1: जी
0: बोला अच्छा, तो अक्सर मैं क्या करता हूँ जब कोई गाने, उस दौर में जब ये ट्रैक सिस्टम आ गया था, तो मैं अपनी वॉइस में गा के रख देता था कि अगर मैं थोड़ा लेट हूँ तो सिंगर वो गाना सुन के लिख भी लेता था और धुन भी याद हो जाती थी। तो मैंने मैंने बोला एक रफ गाया है मैंने, सुन लीजिए आप। तो गाना इस तरीके से था, हो तुम पे बस तेरा

0: जब ये अंदाज उन्होंने सुना तो
1: जी
0: 2 मिनट तो मेरी तरफ देखी, फिर मुस्कुराई, बोला अच्छा लिखा मुझे। लिखने के बाद में उन्होंने दमन सूद साहब से बोला कि सूद देख ले, अगर मेरी वॉइस क्रैक नहीं होती हो तो एक ट्राई करके देखते हैं। मैं बोला रहने दीजिए दीदी, क्योंकि अब आप भी थक गई होंगी 3 घंटे। बोले नहीं, ट्राई करते, नहीं हुआ तो फिर बाद में देखेंगे। अब उन्होंने वन टेक में ही गाना परफेक्ट गा दिया,
1: क्या बात।
0: गाना हो गया। उसके बाद में जब तक खाना आ गया था तो यश जी भी आ गए थे। तो
1: जी
0: यश जी बोला यार मैं तो एक गाने के हिसाब से पेमेंट आया, तुमने तो चारों कर दिए। अरे ये जिंदगी में पहली मर्तबा हुआ
1: जी
0: कि दीदी ने, लता दीदी ने एक ही स्टूडियो में एक ही म्यूजिक डायरेक्टर का, एक ही फिल्म का,
1: चार
0: एक ही
1: गाने,
0: समय में 4 गाने गाए हूं।
1: क्या
0: ये मेरे
1: बात
0: लिए
1: है,
0: बहुत
1: ये
0: नसीब
1: क्रेडिट आपको गया
0: जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात रही।
1: जी
0: और मैं समझ रहा हूं शायद दुनिया में ये पहला ऐसा मौका रहा होगा दीदी के लिए।
1: जी

0: फिर खाना खाते खाते मैंने दीदी से पूछा, मैं ये बात आपके रेडियो के माध्यम से पब्लिक तक जो सिंगर बनना चाहते हैं उनको कहना चाहूंगा कि देखिए सिंगर ऐसा ही बड़ा नहीं बनता है
1: जी।
0: सिंगर के कुछ नियम होते हैं जो कि हर आज नए सिंगर हो या पुराने सिंगर हो उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। जब दीदी से मैंने ये बात कही कि दीदी आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से हर बार बोलती, क्यों, उनकी एक आदत थी, जैसे मैंने गाना गाया गोरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, फिर बोलती थी एक बार और ऐसे करके 5-6 बार सुनती थी।
1: अच्छा।
0: तो मैंने कहा दीदी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप क्या हर म्यूजिक डायरेक्टर से बोलती थी कि एक बार और एक बार और? तो हंसने लगी, बोले दिलीप मैं गाना तो सुनते ही मुझे याद हो जाता है।
1: अच्छा।
0: मगर मैं गाना बार बार इसलिए सुनती हूँ कि म्यूजिक डायरेक्टर जब गाना बनाता है उस वक्त वो अलग शक्ल में होता है, फिर उस पर वो गाना लिखता है तो वो अलग शक्ल बन जाती है, फिर वो गाना डायरेक्टर तक जाता है तो उसकी और शक्ल अलग हो जाती है, फिर वो प्रोड्यूसर सुनता है तो और शक्ल हो जाती है, फिर म्यूजिशियन के पास आते आते और अलग हो जाता है, और जब सारे म्यूजिशियन मिक्स होकर करते हैं तो वो परफेक्ट एक सॉन्ग बनता है। तो म्यूजिक डायरेक्टर के अंदर वो पूरा गाना वार्म अप हो जाता है। तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के एक्सप्रेशन नोट करती हूँ कि वो गाते वक्त उसके चेहरे के हाव भाव क्या हो रहे हैं,
1: क्या बात है,
0: और कौन से शब्द पे वो सांस ले रहा है, कौन से शब्द पे उसके चेहरे के क्या हाव भाव चेंज हो रहे हैं, तो मैं वो ऑब्जर्व करके फिर अपनी फील देती हूँ। और ये आज के सिंगर को हमेशा होना चाहिए कि आप जब गाना आते हैं किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर का, चाहे वो नया म्यूजिक डायरेक्टर हो चाहे पुराना हो या आपके बराबर ही हम दोस्त भी हो, आप पहले गाने को सुने, उसकी सिचुएशन सुने, प्लस उसके एक्सप्रेशन के अलावा, क्योंकि जो शब्द आप गाओगे वही एक्सप्रेशन देगा आपका हीरो
1: बिल्कुल
0: या हीरोइन
1: बिल्कुल।
0: तो आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि भाई मैं जिस तरीके से गाऊंगी वही एक्सप्रेशन डांस डायरेक्टर वहां पिक्चराइज करेगा, वही एक्सप्रेशन हीरो हीरोइन देंगे। तो वो अच्छा, लोकेशन भी पूछना चाहिए, पिक्चराइजेशन का समय भी पूछना चाहिए, जैसे कि पुराने सिंगर पूछते थे अच्छा कहाँ हो रहा है, नाइट में हो रहा है या डे में हो रहा है, आउटडोर हो रहा है कि इंडोर हो रहा है, नदी के किनारे हो रहा है कि गार्डन में हो रहा है, कि बर्फीली पहाड़ियों में हो रहा है, कि खंडर में हो रहा है, कि डेजर्ट में हो रहा है, कि रेत

0: तो ये जो सिचुएशन है पहले पूछते थे,
1: मतलब इतनी गहराई में जाना होता है कलाकार को, एक सिंगर को, एक संगीतकार को,
0: जिस तरीके से संगीतकार जाता है, जैसे मैं जाता,
1: गीतकार भी जाता होगा निश्चित रूप से,
0: नहीं डेफिनेटली हमको सबको जाना पड़ता है उसमें, क्योंकि जब हम लोग, क्योंकि जो कंपोज हम करेंगे, जो शब्द हम कंपोज करेंगे, जो भाव सिंगर देगा गाने में, जैसे उतार चढ़ाव, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग जब गाना गवाते हैं सिंगर से, तो गाना तो उसी वक्त याद हो जाता है, मगर उसको डबिंग करते वक्त 2-3 घंटे क्यों लगते हैं, क्योंकि वो जो एक्सप्रेशन होते हैं शब्द के, हम वो उससे करवाते हैं। जैसे कि एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, जैसे हरिहरन जी, चित्रा जी हमारे बहुत ही सुलझे हुए सिंगर हैं, दोनों क्लासिकल के माहिर हैं।
1: चित्रा जी
0: मद्रास के, साउथ की,
1: चित्रा
0: के, हम चित्रा जी बोलते हैं उनको। उनका जब मैंने पहली फिल्म उनके साथ की थी जिद्दी, तो मेरा गाना था, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए।

0: तुमसे
1: क्या
0: ना,
1: बात है, बहुत
0: तो ये
1: सुंदर
0: गाना उन्होंने 2 घंटे में गा दिया।
1: जी।
0: जब सैम दोनू सिंगर मेरी फिल्म आई अफलातून, जिद्दी में भी डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, बबलू पची जिया जी प्रोड्यूसर थे, अफलातून के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे गुड्डू धनवा जी, तो उसका एक गाना था,

0: दिल।
1: बहुत गहरा गाना
0: अब
1: था
0: ये
1: ये।
0: गाने में उनको 4 घंटा लग गए। अब होता क्या है कि जब आप किसी बड़े सिंगर के साथ काम करते हैं तो आप बार बार कट नहीं कर सकते हैं।
1: जी
0: तो आपको क्या है कि उनके रिस्पेक्ट को भी रखना है, उनकी जो ओहदा है, जो उनकी पोस्ट है,
1: उसको भी रखना है।
0: उसको भी कायम रखना है, और हमें हमारी जो चीज चाहिए वो भी निकलवानी है। तो उसके लिए क्या करता था मैं, आधा घंटा 15 मिनट किया, फिर मैं ब्रेक ले लेता था। फिर उन लोग पूछते थे क्या हुआ, मैं बोला नहीं, मैं 1 मिनट थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। फिर जाता था उनके कैबिन में, हॉल में जाके फिर बैठते थे, आइए जरा 2 मिनट बैठते हैं, क्या हुआ सर कुछ? नहीं, मैं बोला बहुत बढ़िया हो रहा है,
1: जी
0: उनको ये नहीं बता रहा हूँ कि क्या कमी हो रही है। फिर बैठ के बातचीत करते थे, फिर बातों बातों में मैं बोला जैसे ये जगह ना, पलकों के साए में सो जा तू, फिर उधर थोड़ी सी बातें मैं अंदाज ऐसे ही बता देता, ऐसा नहीं बताता था कि आपसे नहीं निकल रहा है। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं फुल्लो? हाँ हाँ सर कर सकते हैं। मैं बोला ऐसा कुछ सोच सकते हैं, जाओ तुझे मैं छुपा लूं, ओ, तो ये मुर्गी रिमेंड ये भी आ सकती है शायद। हाँ आ सकती है सर। तो जैसे बच्चों को कैसे हम लुबराते
1: जी
0: हैं,
1: साइकोलॉजिकल।
0: तो वैसे उनके, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ या इतने बड़े सिंगर को आप बार बार अगर ऐसे करेंगे तो वो कहीं ऐसा ना हो कि बुरा मान जाए, प्लस कहीं फंस ना जाए। अच्छा सिंगर अक्सर ऐसा फंस जाते हैं, वो लूप अगर लग गया उनको तो फिर अटक गए, तो अटक गए।
1: अटक गए
0: तो बहुत ही बच्चों की तरह ट्रीट करके उनके साथ वो निकलवा के, क्योंकि वो इस काबिल थे और
1: थे
0: काबिल
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: चलिए गीत सुनते हैं पहले आपकी पसंद का।
0: आप वो गाना लगाइए जिस गाने को दीदी ने बड़े प्यार से गाया है,
1: जी

आप सुन रहे थे संगीतकार जोड़ी दिलीप सेन समीर सेन के दिलीप सेन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, द्रविड़ भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

0: जी का सुमधुर उपशास्त्रीय गायन।
1: दिस इज आकाशवाणी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
0: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सानिध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूर्व अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूर्व अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सब्सिक्वेंटली शी अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग इन खयाल एंड टप्पा सिंगिंग अंडर द एमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ द ग्वालियर घराना पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित अंडर द गाइडेंस ऑफ पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू फॉर नियरली 14 ईयर्स शी मास्टर्ड द ऑथेंटिक पूरब अंग गायकी परफॉर्मिंग ठुमरी, दादरा, होरी एंड कजरी एंड ऑल्सो एकम्पनीड हर गुरु ऑन न्यूमरस प्रेस्टिजियस ओकेजन्स। इन एडिशन टू टॉपिंग हर एमए एंड एमफिल डिग्रीज इन म्यूजिक फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी विथ गोल्ड मेडल्स, श्रीमती अदिति बैनर्जी वॉज स्पेशली ऑनर्ड बाय पद्म विभूषण गिरिजा देवी ड्यूरिंग द पूरब अंग गायकी उत्सव।
0: आइए सुनते हैं श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबले पर संगत कर रहे हैं श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं श्री सौमित्र क्षीरसागर। कार्यक्रम के प्रारंभ में आइए सुनते हैं राग मिश्र तिलक कामोद में निबद्ध ठुमरी जो दीपचंदी ताल में बद्ध है। इसके बोल हैं बैरन रतिया कैसे आऊं।
1: लेट्स लिसन टू दिस रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी इज अकंपनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। शी बिगिन्स हर रिसाइटल विथ ठुमरी कंपोज्ड इन राग मिश्र तिलक कामुद सेट टू दीपचंदी ताल। बैरन रतिया कैसे आऊं।

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक कामो ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी मिश्र तिलक कामोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कंपोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा,
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम

0: यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू वर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।
2: ఆకాశవాణి వరంగల్ కేంద్రం నిలయముల సమయం 11:30. ఇంతటితో ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలు సమాప్తం. తిరిగి రేపు ఉదయం 5:53 ప్రారంభమయ్యే ఆకాశవాణి కార్యక్రమాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్తే. జై హింద్.